एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन आध्यात्मिकता जीवन में आशा, नैतिक शक्ति और शांति लाते हैं। अध्यात्म सिखाता है कि ईश्वर सत्य है, दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। ये हमें सही रास्ते पर चलने, धैर्य रखने और संकट में भी भरोसा ना खोने की प्रेरणा देता है।

प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास शब्द नहीं होते, आवाज़ नहीं, भगवान उनकी भी सुनते हैं।

शिव उत्पत्ति का कारक भी है और संहार का भी। वही आदि है, जन्म मरण से परे है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा।

जब नाम रूप हृदय रूपी मंदिर में समा जाता है, कोई लोभ कोई मोह महत्वपूर्ण नहीं रहता। जब राम नाम सांस पर सांस चलने लगता है, भगवत प्राप्ति मोक्ष कल्याण सब सुखों का आकर्षण समाप्त हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान, और आज आप सुनेंगे इसका 228वां भाग।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का समय रहता है सुबह 7:40। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने में सुबह 8:30 पर और गीतों का कारवां सुबह 10:00।

0: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर, और लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:05 पर। महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनो सखी आप सुनते हैं रोजाना दिन में 12:30 पर। हमारी शाम की सभा में युवा मंच कार्यक्रम का समय रहता है रोजाना शाम 5:25 पर, और 6:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत, कार्यक्रम रहेगा सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्रहिंदियां प्रसारित किया जाएगा। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8:00। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:18 पर, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, और आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम हिम दर्शन रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, सुबह 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9, 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती, रात्रि 10:00 एशियाई खेल 2026 की दैनिक हाइलाइट्स, 10:20 पर रात्रि संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मछार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सह चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् 80+ यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमंत्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत। प्रधानमंत्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवोकेट हैं और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: करस्पर्शेन सद्यः वार्ताप्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु, आकाशवाणी समाचार इति वाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
1: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिल्वॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक तथा जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू हो गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला कुश्ती, हॉकी और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
6: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialties covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Dr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology

0: सुबह सुहानी।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए फिल्म संगीत के साथ साथ जानकारियों का ये कार्यक्रम सुबह सुहानी। और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की हम सुविचार के साथ। जीवन की असली ऊंचाई किसी को नीचे गहरा कर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर हासिल की जाती है। जो लोग दूसरों की बुराई, आलोचना या उन्हें नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा अच्छे कर्मों और ईमानदारी के रास्ते से ही मिलती है। कहते हैं कि कर्मों का हिसाब जरूर होता है, इसलिए दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से बेहतर है कि हम अपने लिए सफलता का रास्ता बनाएं। सम्मान, विश्वास और अच्छे रिश्ते वही पूंजी है जो इंसान को लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। अब ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: तो श्रोताओ, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम सुबह सुहानी में, और बात करते हैं भारत से जुड़ी ऐतिहासिक कुछ खबरों के बारे में। क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन? तो आपको बता दें कि 1999 में निषाद कुमार ऊंची कूद के भारतीय पैरा एथलीट हैं, उनका जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण का जन्म आज ही के दिन 1959 को हुआ था, और भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जन्म 1953 में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी अमृतलाल बेघड़ का जन्म 1928 को हुआ था। तो इनके बारे में और भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

स्वागत है श्रोताओं, आपका एक बार फिर से सुबह सुहानी कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास में आज के दिन की कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं पर। 1824 में कुंजा उत्तराखंड में उनके वीर योद्धा और राजा विजय सिंह पवार ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा संघर्ष करते हुए 3 अक्टूबर के दिन मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1831 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुशासन के आरोप में मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था। 1880 में पुणे में पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का पहली बार मंचन किया गया था। 1977 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में चलते गिरफ्तार किया गया था। भारत के प्रसिद्ध विलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी ने विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 1992 में जीता था। उद्योगपति रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर से अपनी महत्वाकांक्षी नैनोकार परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 2008 में आज ही के दिन। और 2010 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन आज ही के दिन 2020 में किया था।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं इस समय आज के दिन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आपको बताएं कि अमृतलाल बेघड़ का जन्म आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। विमूलता गुजराती संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले हैं और 1948 से 1953 तक शांति निकेतन में कला का

अध्ययन उन्होंने किया। नर्मदा नदी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और यही वजह थी कि उनकी नर्मदा वृतांत की 3 पुस्तकें हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत में प्रकाशित हुई। गुजराती और हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और महापंडित राहुल संकृत्यायन पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा लिखित सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रसिद्ध पुस्तक है। 2018 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा मानक उपाधि अमृतलाल को प्रदान की गई थी। उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण जबलपुर में उनके निवास पर एक सादे समारोह में उपाधि प्रदान की गई थी। अब आपको बता दें कि वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रजातियों का विशाल भंडार है, इसलिए भी भारत में कई सम्मेलनों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रकृति प्रेमियों के बीच सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वन्य जीवों से संबंधित निबंध लेखन, चित्रकला, संभाषण, फिल्म स्क्रीनिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक समुदाय व परिवारों को प्रकृति से जोड़ना ही वन्यजीव सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य है। मानव के अंदर संरक्षण की भावना पैदा करना, वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना, ये सब इस अभियान के उद्देश्य हैं। और हमें हमेशा प्रत्येक वन्य प्राणी, पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाई है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी रखा है। प्रकृति के अनुसार मानव पर्यावरण और वन्य जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। पर्यावरण से ही मानव का जीवन संभव है और पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। अब लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं गीत।

0: उठने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी, और इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों के बारे में।

तो सबसे पहले आज के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए कई नए सुधारों की शुरुआत की है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दिव्यांग जनों के लिए विशेष छूट वाले फास्टैग की वैधता अवधि अब एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले तेज किए, जबकि कीव में कई महत्वपूर्ण पुलों पर हमलों से यातायात प्रभावित हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तनाव बढ़ने पर चिंता जताते हुए पश्चिमी देशों को स्थिति को और न बढ़ाने की चेतावनी दी है। इसराइल जाने वाली फ्लाई दुबई उड़ान में हुई गंभीर सुरक्षा

0: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के संदेश और उनके आदर्शों की सराहना की है। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक नया मिसाइल प्रोजेक्टाइल दागा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हलचल तेज हो गई है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार, और अब लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में

0: आहा।
1: तो तुम बताओ।
0: बताओ।
1: हाँ।
0: सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए।
2: तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याह।

0: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो श्रोता, शुभ प्याग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और पहला लोकगीत आपने सुना शांति विस्ट की आवाज में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला लोकगीत जिसे गाया है ओम प्रकाश और साथियों ने।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सर्व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
3: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी देवी की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर

0: कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमरीका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और

0: उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
1: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: मेरा नाम पूजा जागा, मैं ग्राम पंचायत शामपुरा डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हज़ार रुपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे

0: दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत। स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शाही खेलों में भारत की कुमकुम मोहित ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO-consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favoured nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labour in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labour is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: The group of seven G7 nations have agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately.
4: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel.

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम और साथियों की आवाज़ों में। और श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू के युगल स्वरों में, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से।

0: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई BP के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
4: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में BP की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
3: आज ही अपना BP चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई BP को कहे अलविदा।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
6: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
7: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
6: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध है।
7: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोताओ, संगीत के रंगों से सजी इस महफिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
4: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
5: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
7: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
8: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
7: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
10: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
11: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
10: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
8: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
12: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: केके की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे जन्नत फिल्म से। तो श्रोताओं, मनोरंजन का ये सिलसिला जारी है, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करें?
4: अरे भाई, देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
3: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये संगीत का सफर जो है वो आपके दिन को और भी खुशनुमा बना रहा होगा। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

आतिफ असलम की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मर्डर फिल्म से। गायक हैं आमिर जमाल।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

वेलकम फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फ़ोन हमेशा इंपोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा

0: ऐसा एक देश को विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जाम्पल, लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगती हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है,
1: जी
0: तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। और डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है, और वो युवा आज जो, जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप, आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं, और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है, मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो, किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको निहारिका आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी, और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है, और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
0: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज़, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज़, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं, और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चली है, मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव-गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उससे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग, सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके ये देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है. तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में.
2: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है. एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं. देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको दो शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है. और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं. एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स. तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती. तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें. तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है. तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है. और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखिए ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं. अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है. तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है. आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है. तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है.
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की. आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है आज के जमाने में? सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
0: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन. क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है. कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है. तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है. तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है
1: जी।
0: इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए। और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफ़ी साइंस हैं, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के
1: बराबर
0: का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन्स के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें, हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी।
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
2: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे। और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेके आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है, उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे, उनको बैठा के उसमें चलाया गया। और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था, आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है, तो डिफेंस में दूसरे नंबर पे डालूंगा। जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है। और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे कई आप देश आज, चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहाँ जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम वो हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
0: देखिए वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहाँ पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
2: मुझे लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है, वहां जाके जब ट्रेन में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कम्फर्ट आया है, क्लीनलीनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के MSMEs के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें MSMEs की भी बहुत अहम भूमिका है।
0: बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड MSMEs हुआ करते थे, करीब वो थे 2-3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड MSMEs हमारे देश में हैं।
1: जी।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक एमएसएमईज को पूरा उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया उसके बाद जो एमएसएमईज की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज हैं लेकिन उसमें एमएसएमईज की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं तो हमारे देश के एमएसएमईज उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है, हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, ये तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं। बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
0: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत। जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
2: शुक्रिया।
0: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:43 हुए हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:50 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों की वास्तविक स्थिति को करीब से समझना। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जंगलों और जल स्रोतों को बचाने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने के बावजूद भी प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं की स्थिति बदहाल। और नाहन मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं ठप, मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार गांवों के द्वार जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों की वास्तविक स्थिति को करीब से समझना है। शिमला जिला में रामपुर उपमंडल के काशापाट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशापाट प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बेहद खूबसूरत क्षेत्र है और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने काशापाट में सड़क की स्थिति सुधारने और क्रैश बैरियर लगाने का भी लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और स्थानीय महिला मंडलों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने रामपुर उपमंडल के दौरे के अंतिम दिन आज नोगली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रामपुर स्थित पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचेंगे, जहां उनका विद्यार्थियों से संवाद के अलावा एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाने और उसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शिमला लौटेंगे। राज्य सरकार ने जमीन के बंदोबस्त नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संबंध में शिमला में आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। ये कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार का मकसद बंदोबस्त प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जंगलों और जल स्रोतों को बचाने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। शिमला के ढली वाटर कैचमेंट सेंचुरी में वन्यजीव सप्ताह 2026 के तहत स्वच्छता अभियान में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि कैचमेंट क्षेत्र शिमला के जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का आह्वान भी किया। अनिरुद्ध सिंह ने स्थानीय समुदायों और स्वयं सहायता समूहों को स्वच्छता व कचरा प्रबंधन से जोड़ने की बात भी कही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने के बावजूद भी प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं की स्थिति बदतर है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल प्रचार प्रसार में ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। उन्होंने सरकार से कर्ज और विकास का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग भी की। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में होने वाली इस बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा है कि नशा समाज के सामने

0: गंभीर चुनौती है और युवाओं को इससे दूर रखने के लिए परिवार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। सोलन विधानसभा क्षेत्र के कोटला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को खेल, शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। शांडिल ने कहा कि नशा मुक्त समाज का सपना साकार करने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए 9 नशा निवारण केंद्र बनाए जा रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
2: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
1: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
2: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला के एकमात्र सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। इसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: मेडिकल कॉलेज नाहन में 30 जुलाई के बाद कोई भी सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया है। स्टाफ की कमी के चलते ये सेवा यहां पर बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं लेने के लिए लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना 1000 से 1200 मरीजों की OPD होती है, जिनमें से कई मरीजों को अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की आवश्यकता रहती है, मगर मेडिकल कॉलेज में ये सेवाएं बंद होने से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत ऊना जिले की शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 56 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करना है। हमारे ऊना जिला संवाददाता ने बताया कि इस महीने नवरात्रों के दौरान इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा।
5: केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के माध्यम से ऊना जिला स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 56 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र द्वारा मंजूरी मिली है। इस परियोजना से मंदिर परिसर के आसपास के दायरे से रिहायशी इमारतों और दुकानों को तोड़वाकर मंदिर परिसर का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, सुरक्षा एवं लंगर व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए भी इस परियोजना में प्रावधान किया गया है और आगामी नवरात्रों से इन कार्यों को जमीनी स्तर पर आरंभ किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर आज शिमला में विशेष साइकिलिंग रैली आयोजित की जा रही है। प्रदेश वन विभाग, साइकिलिंग एसोसिएशन और शिमला साइकिलिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रैली का उद्देश्य युवाओं को वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के अलावा साइकिलिंग फिटनेस और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है। कुल्लू मनाली में इन दिनों एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में काफी अधिक संख्या में पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से मॉल रोड सहित अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की चहल पहल देखी जा रही है। इससे पर्यटन कारोबार में तेजी का इंतजार कर रहे कारोबारी के चेहरे पर भी रौनक आई है। रोहतांग दर्रा, अटल टनल और सोलंग नाला में काफी संख्या में पर्यटक सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कई सैलानी बर्फबारी की उम्मीद लिए भी मनाली पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक नजारा और ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए इन वादियों का रुख कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, कम बारिश से हिमाचल में गहराया बिजली संकट, अघोषित कटौती शुरू। इसी अखबार की एक और खबर है, इस बार महंगा मिलेगा सेब, उत्पादन में 40% तक की कमी। जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है, मौसम की मार, देश भर में महंगा हुआ हिमाचली सेब। हमीरपुर में फोर लेन पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा, एक मजदूर की मौत, इस खबर को पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल सहित अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को आंधी तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों की वास्तविक स्थिति को करीब से समझना। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जंगलों और जल स्रोतों को बचाने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने के बावजूद भी प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं की स्थिति बदहाल। और नाहन मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं ठप, मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
6: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
7: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
6: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
7: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र में केंद्र से। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त सुमन। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, यादों की कसम फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना यादों का मौसम फिल्म का ये गीत। अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबराय की आवाज़ों में एंजॉय कर रहे थे आप इस गीत को। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वास्तव फिल्म से। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं इस गीत को।

मिले जुले से गीतों को एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं, आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म से।

कार्यक्रम गीतों का कारवां एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओ। आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत। सौदागर फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

किशोर धीमान की आवाज में सुना आपने इस हिमाचली गीत को। इस समय आप पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एंजॉय कर रहे हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट टीएनसी अप्लाई।

शो तो जहाँ भी पहाड़ी गीत बजते हैं वहाँ दिलों को एक सुकून सा मिलता है, खुशी मिलती है और कभी झूमने का भी मन करता है। आइए थोड़ा सा और झूमका ले करनैल राणा की आवाज़ में गाए हुए इस हिमाचली गीत के साथ।

श्रोताओ, अपने जगह की बोली के गीतों का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो आइए एक और अपनी बोली में, यानी हिमाचली बोली में आपको सुनवाते हैं लक्ष्मी देवी की आवाज़ में गाया हुआ ये प्यारा सा हिमाचली गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार ले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने रामपुर उपमंडल के दौरे के अंतिम दिन आज नोगली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रामपुर स्थित पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचेंगे, जहां उनका विद्यार्थियों से संवाद के अलावा एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाने और उसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शिमला लौटेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार गांवों के द्वार जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों की वास्तविक स्थिति को करीब से समझना है। शिमला जिला में रामपुर उपमंडल के काशापाट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशापाट प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बेहद खूबसूरत क्षेत्र है और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने काशापाट में सड़क की स्थिति सुधारने और क्रैश बैरियर लगाने का भी लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और स्थानीय महिला मंडलों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा है कि नशा समाज के सामने गंभीर चुनौती है और युवाओं को इससे दूर रखने के लिए परिवार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। सोलन विधानसभा क्षेत्र के कोटला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को खेल, शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए 9 नशा निवारण केंद्र बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जमीन के बंदोबस्त नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संबंध में शिमला में आयोजित एक बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। ये कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार का मकसद बंदोबस्त प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने के बावजूद भी प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और जनसुविधाओं की स्थिति बदतर है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल प्रचार प्रसार में ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। उन्होंने सरकार से कर्ज और विकास का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग भी की। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जंगलों और जल स्रोतों को बचाने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। शिमला के ढली वाटर कैचमेंट सेंचुरी में वन्य जीव सप्ताह 2026 के तहत स्वच्छता अभियान में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि कैचमेंट क्षेत्र शिमला के जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का आह्वान भी किया। सिरमौर जिला के एकमात्र सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। इसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: मेडिकल कॉलेज नाहन में 30 जुलाई के बाद कोई भी सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया है। स्टाफ की कमी के चलते ये सेवा यहां पर बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं लेने के लिए लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना 1,000 से 1,200 मरीजों की ओपीडी होती है, जिनमें से कई मरीजों को अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की आवश्यकता रहती है, मगर मेडिकल कॉलेज में ये सेवाएं बंद होने से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख तक कर दी है। इस बार की ई नीलामी में दिल्ली की विविधता और विरासत को दर्शाने वाले 30 अलग अलग स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें 9 फोटो फ्रेम, 9 स्मृति चिन्ह तथा 6 मूर्तियां, प्रतिमाएं और स्टैच्यू शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी 1 स्मृति वस्तु, धार्मिक वस्तुएं, 1 पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प से जुड़े सामान भी नीलामी का हिस्सा हैं। नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे परियोजना में दी जाएंगी। पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल pmmomentos.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक कुमार की आवाज में।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गूंज पहाड़ों की आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अजय सिंह की आवाज़ में।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत इस समय आप इंतजार कर रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

बॉर्डर फिल्म का गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाजों में एंजॉय कर रहे हैं आप इस गीत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं जय हिंद गीतमाला। देश प्रेमी फिल्म का गीत इस समय आप सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम का पहला गीत अमित कुमार की आवाज में।

बालिका वधू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में। सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क

0: धर्मशाला रोड कांगड़ा तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट टीएनसी अप्लाई।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट टीएनसी अप्लाई।
5: सैनिक भाइयों, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लावारिस फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़।

0: प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: सैनिक भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्म संगीत में और आज की इस सफर में मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा। एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए से। अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना, जैसा कि आप जानते हैं हर रविवार को आरोग्यम कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, तो इस बार 4 अक्टूबर यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रसारित किया जाने वाला लाइव फोन इन आरोग्यम कार्यक्रम का विषय रहेगा सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन से संबंधित। तो इस विषय पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी चुग मौजूद रहेंगी आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय एक बार फिर से बता दें, विषय रहेगा सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके लिए आपको करना होगा 4 अक्टूबर यानी रविवार को कल सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक फ़ोन, और फ़ोन करने के लिए नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से 01892224391। सूचना समाप्त हुई। लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वरों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 12:30 हुए

कार्यक्रम सुनो सखी के सुहाने सफर में सखियो, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी जानी पहचानी सी सखी सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो आइए सखियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज है शनिवार और शनिवार को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं माँ की चिट्ठी। जी हाँ, माँ शब्द बहुत ही प्यारा सा शब्द है और साथ ही साथ पूरा संसार जो है माँ शब्द में समाया होता है। तो माँ की चिट्ठी की बात हम कर रहे हैं। माँ की चिट्ठी में कागज़ पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते हैं, उसमें माँ का प्यार, चिंता, आशीर्वाद और जीवन के अनुभव छिपे होते हैं। सखी, आज के समय में हम फ़ोन से बातचीत कर लेते हैं, मगर पहले के समय की बात करें तो ज़्यादातर हम चिट्ठी ही लिखा करते थे और चिट्ठी के माध्यम से अपनी भावनाएं जो है व्यक्त किया करते थे। सखी, माँ की चिट्ठी अक्सर बच्चों के स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, संस्कार और भविष्य की चिंता को दर्शाती है। माँ बच्चों को बताती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में क्यों ना आ जाएँ, उन्हें ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ हमेशा अपने बच्चों को सिखाती है कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और ज़रूरतमंदों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि माँ की जो सीख होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। बेशक आज इंटरनेट का सखियों दौर है और दूर होने के बावजूद माँ की चिट्ठी भावनाओं और रिश्तों की गहराई को महसूस कराने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। साथ ही साथ सखियों, माँ की चिट्ठी हमें ये याद दिलाती है कि माँ का प्यार, माँ और दूरी समय परिस्थितियों से कभी कभी नहीं होती है। माँ के शब्द बच्चों के लिए जीवन भर मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। माँ की दी हुई सीख कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। तो बातें तो कार्यक्रम में बहुत सारी आपके साथ करनी है, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का प्यारा पहला सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और इंजॉय करते हैं।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यु टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यु टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखी इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी सखियों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं सुनो सखी, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ की चिट्ठी के बारे में। तो चलिए माँ की चिट्ठी फिर से पढ़ते हैं और माँ की भावनाओं को जानते हैं। गीत के जरिए भी हमने माँ की बहुत सारी जो हैं भावनाएं भी सुनी हैं, और बच्चों की माँ के प्रति क्या भावनाएं हैं वो भी सुनी हैं। माँ सच में बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हमारे लिए करती है। रात रात भर जागती है, खुद गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुखाती है। बिल्कुल सही बात कही है सखी, माँ का प्यार बच्चों के लिए बहुत सारा होता है। माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, और माँ की भावनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में और फिर से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, और बात हमारी माँ की हो रही है तो माँ की ही बात करेंगे। माँ हमेशा अपने बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना सिखाती है। माँ बच्चे को बताती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो तो उसके लिए सकारात्मक सोच, धैर्य और मेहनत बेहद ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। रास्ते में मुश्किलें आएं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और असफलता अगर मिल भी जाए तो निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी जो तकलीफें और परेशानियां हैं रास्ते में आती हैं। जब जीवन के सफर में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, और असफलता से भी हम कई बार कुछ सीख लेते हैं, और इस सीख के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और सकारात्मक सोच का मतलब और अर्थ सखियों कभी ये नहीं होता है कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि परेशानियां आने पर हमें समाधान खोजने की कोशिश करनी है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। माँ बच्चे के जीवन में बहुत सारी बातें बताती है कि अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें और मेहनत करें, दूसरों से अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, और अपने प्रगति के रास्ते पर हमें बढ़ते जाना है। तो थोड़ा सा हमें भी कार्यक्रम में बढ़ना है और अपनी सखियों को यानी आपको सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनती रहिए सुनो सखी कार्यक्रम, और जुड़ी रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

सखियो, ये प्यारा सा गीत आपने कार्यक्रम में सुना, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात हमारी हो रही थी माँ की चिट्ठी के बारे में कि माँ की चिट्ठी में बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए होता है, जो समझ होती है वो अपने बच्चे को बताती है, सिखाती है कि कभी जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे रुकावटें हमारे रास्ते में आती है और कई बार हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। तो असफलता से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और हारना तो बिल्कुल नहीं है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी दौड़ में भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि कोई आगे निकल जाता है तो कोई पीछे रह जाता है। हर कोई तो अव्वल नहीं आता है ना, तो उन्हीं असफलताओं से हमें सीखना है और फिर से उठना है, फिर से मेहनत करनी है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और नकारात्मक विचारों की अगर हम बात करें तो नकारात्मक विचार तो बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देने हैं, हमेशा ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना है। सखियो, माँ हमें हमेशा बताती है कि बेटा, मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, मन में विश्वास है और मेहनत के साथ तुम आगे बढ़ते हो तो रास्ते में रुकावटें तो आती हैं लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह माँ बच्चे के मन में आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत और साथ ही साथ सकारात्मक सोच के बीज बचपन से ही बो देती है। यही संस्कार आगे चलकर बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ने में मदद करते हैं और साथ ही साथ बच्चे को ये भी बताती है कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अपनी गलतियां सुधार कर विश्वास के साथ अपने जो है लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और याद रखो बच्चों कि सकारात्मक सोच बच्चे को मुश्किल समय से आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती है। बच्चों के साथ साथ सखियों हमें भी हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और थोड़ा सा कार्यक्रम में सखियों करते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ, तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला और कार्यक्रम सुनते रहे सुनो सखी।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी सखियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि घर परिवार के किचन में, माफ़ कीजिएगा, सुनो सखी के किचन में चलने का समय हो गया है। और जब हम किचन में जाती हैं तो बढ़िया बढ़िया सी खुशबू भी आती है, बहुत सारा सामान रखा होता है, उनमें हमें पसंद करना पड़ता है क्या बनाना है, और कभी क्या होता है खाने की इच्छा होती है कि क्या खाया जाए। तो आज हम अपने किचन में यानी घर अपने में और साथ अपनी सुनो सखी के कार्यक्रम की सखियों के साथ मिलकर बना रही हैं किचन में कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा बनाना काफ़ी आसान होता है, जब बना लेती हैं तब आसान लगता है, उससे पहले थोड़ा सा मुश्किलों भरा हर काम लगता है। उसको बनाने के लिए सखियों फटाफट से करते हैं तैयारी। सबसे पहले हमें लेना है मार्केट से कद्दू, और कुछ सखियों का बनाने का तरीका ऐसे होता है कि कद्दू को धोकर साबुत काट लेती हैं ताकि उसका छिलका जो है बाद में जो है निकल जाता है बॉइल करने के बाद यानी उबालने के बाद। कुछ सखियाँ क्या करती हैं कि कद्दू के छिलका उतार कर कद्दू को उबलने के लिए डालती हैं, और कुछ सखियाँ क्या करती हैं कि सीधा ही दूध के बीच में कद्दू को डाल देती हैं कुकर में विसल लगाने के लिए ताकि उसमें जो वो तैयार हो जाए। अब सखियों क्या करना है कि जब हमें लगे कि कद्दू जो है हमारा थोड़ा गल चुका है, चाहे आप पहले उसे बॉइल कर ले दूध के बिना, चाहे दूध में डालकर बॉइल करें, जब आपको लगे कि वो बॉइल हो गया है तो उसे थोड़ा सा उसका पानी सुखाएं। सुखाने के बाद अब क्या करना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, और देसी घी आप डाल लें तो उसका स्वाद जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और अच्छा सा उसे भूनने के बाद कुछ सखियाँ क्या करती हैं कि उसमें रंगत के लिए हरा रंग डाल देती है, खाने वाला रंग मार्केट में मिलता है उसे हम डाल सकती हैं, उसका रंग से वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है, दिखने में खूबसूरत लगता है। और कई बार हम सोचते हैं अरे ये हरा कद्दू किस तरह से बनाया है, इस कद्दू का हलवा बनाने के लिए ये रंग का कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो सके फूड कलर उसमें हम डाल सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहे तो आप कद्दू के हलवे को बिना रंग के भी बना सकती हैं। कुछ सखियाँ जो है चीनी के साथ बनाती हैं तो कुछ सखियाँ इसे गुड़ के साथ भी बनाती हैं। जैसी आपकी इच्छा हो उस तरह से आप बनाएं, चीनी डालकर बनाएं या गुड़ डालकर बनाएं। इसे अच्छे से भुने, भुनने के बाद कुछ सखियाँ जो है रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डालती हैं तो कुछ सखियाँ बिना रोस्ट किए ही डालती हैं। अगर आप रोस्ट करके डालना चाहती हैं तो उसे जो अभी आपके पास ड्राई फ्रूट है ना रोस्ट करके डाल लें, और डालने के बाद उन्हें अच्छा सा सर्व करें और परोसें थाली में। आप करें कद्दू का हलवा बनाने की तैयारी, और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज़ में कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए सुनो सखी कार्यक्रम को।

सखियों, अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुनो सखी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है विपिन कुमार ने। प्यारी सखियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
2: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
3: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabav Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said that Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75 to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijay Dashami. The 138th episode of Mann Ki Baat was broadcast recently. Over the past 12 years, Mann Ki Baat has provided a unique platform to highlight the positive transformation taking place across the country and to encourage citizens to participate actively in India's development journey. Through the monthly program, the Prime Minister shares inspiring stories of people from across the country who are making a difference in areas including education, healthcare, environmental conservation, innovation and social service. The UAE Attorney General Counselor Dr. Hamad Saif Al-Shamsi has said that investigations into the Fly Dubai flight FZ1073 incident found that the co-pilot attempted to carry out a terrorist attack. Emirates news agency quoted Al-Shamsi saying the co-pilot began executing his plan during the flight by attacking the captain inside the flight deck with a crash axe and attempting to take control of the aircraft. Investigations are continuing to establish the full circumstances and motives behind the incident, as well as any links, while technical examinations and analysis of physical and digital evidence are also underway. Five Indian nationals were rescued after a Kuwait-flagged tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian Embassy in Oman said in a post on social media today that it coordinated the rescue of the five Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. In Asian Games cricket, India set a 212-run target against Pakistan in the gold medal clash at Nishin, Japan. In reply, Pakistan were 139 for 4 in 15.5 overs when reports last came in. In Asian Games, Indian archer Neeraj Chauhan upset compatriot Dheeraj Bumadevra 6-4 to bag the bronze medal in the men's individual recurve event in Nagoya, Japan today. And that is the end of this news bulletin.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं स्वीट 90s में।

0: मुस्कुराए थे, और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं बोला टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम, महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
1: जी बिल्कुल।
0: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला तो ये मुखड़ा सुनो।
1: अच्छा,
0: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
1: हाँ हाँ,
0: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी
1: जी,
0: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनके बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शौकत जी भी थी।
1: हाँ,
0: और कहता है यार मेरे सामने तुमने बनाई है
1: बिल्कुल
0: ट्यून, मैंने हाँ बाजा भी नहीं था उस वक्त, वैसे गुनगुना रहा था
1: जी,
0: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर, छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली, और महेश जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई आप सुनो। और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के वो ऐसे लाजवाब वर्ड्स थे, वो दोनों का तालमेल हो गया, और महेश जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना यहीं बैठे हैं कैफी अंकल और यहीं बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
1: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
0: और यादों के हर जंगल में रहते हैं, ये जो लाइन है यादों के जुगनू जंगल में रहते हैं,
1: वाह
0: ये ये ये ये पेंट करना शब्दों के जरिए
1: बिल्कुल
0: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
1: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा हैं
0: बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
1: जी
0: लिसनिंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकर आ रहे छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
1: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
0: हसरत जयपुरी
1: साहब, हसरत जयपुरी की।
0: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे।
1: हाँ,
0: मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड्स आते थे ना
1: जी जी,
0: तो उनके बेटे घर में बैठ के मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी का सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहाँ से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
1: हाँ जी,
0: राज साहब के जितने भी गाने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
1: हाँ,
0: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
1: जी,
0: आपको याद होगा राधा का संगम,
1: हाँ
0: ओ राधा तेरे बिना। अब यहाँ जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सुनी बहवाल का
1: जी,
0: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात
0: पहला
1: है।
0: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
1: जी जी
0: वो संग बाय आशा भोसले,
1: क्या बात है,
0: 1977 मतलब 1975 में आई वाज ओनली 14।
1: हाँ,
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और यह नाम है हंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरे भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सीखा है क्या।
1: हाँ, हाँ।
0: आशा जी ने पूछा, तो डैडी ने बोला नहीं ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है, तो यहाँ सरस्वती माँ ही बोल रही हैं, और वो ही नतीजा है कि आशा जी लता जी, आशा जी लता जी रफी साहब किशोर कुमार
1: जी
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है,
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है, जब मैंने गाना बनाया था बन के नजर दिल की जुबां,
1: हाँ,
0: कहने लगी एक दास था जो किशोर दा ने गाना गाया था।
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों, बोले

0: जितना तेरा मुखड़ा मीठा है
1: हाँ।
0: उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा
1: हाँ।
0: कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना
1: हाँ।
0: मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया
1: हाँ।
0: तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन हु मेक्स अ वेरी गुड अंतरा। ये हमने सीखा था आर डी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जी हरिजी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो
1: हाँ।
0: सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो
1: हाँ, हाँ।
0: मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जहां ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते हो तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूं तो मैं बोलता हूं कि क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊं ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है, ये वो शख्स हैं जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं, अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन
0: उनके साथ मैंने गाना, सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात
1: हाँ,
0: ना निगली जाए ना उगली जाए
1: हाँ,
0: गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरह छीन कर लेके आते थे, तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह आ मेरे आशियाने में आ, या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है
1: हाँ,
0: सौ दर्द है
1: सौ राहतें,
0: सौ राहतें सब मिला है मुझे एक तू ही नहीं,
1: क्या गाना बनाया
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे
1: बिल्कुल
0: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी
1: हाँ।
0: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी,
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया, बल्कि मैं
1: अपने
0: सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी,
0: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
1: जी,
0: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं मेरे साथ थी, राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी,
1: मुन्ना भाई
0: MBBS
1: जी।
0: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च्ड देयर कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
1: जी,
0: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ काम किया, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते, मैं बार बार कहता हूँ संगीत संगत का काम है
1: जी जी जी,
0: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
1: जी,
0: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो मिलकर जान लगाते हैं
1: बिल्कुल।
0: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछोगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं
1: यस,
0: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस पर साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता, सामने डायरेक्टर बैठा होता है
1: हाँ।
0: और बोलता है मेरी सिचुएशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
1: जी,
0: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS
1: यस,
0: गाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए, मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा
1: हाँ,
0: और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन भी, आप क्या गाना सोचेंगे? हॉस्पिटल रात को गाना है, अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं, ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट व्हाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर,
1: यस यस,
0: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तर छेड़ी, तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये,
1: हाँ,
0: बोला भी है कि अन्नू मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए, मैं दरवाजे से देख रहा था अन्नू मलिक यहाँ चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है,
1: अच्छा,
0: तो 15 मिनट में, और मैंने ऐसे गाया मैंने एक ही वर्ड देख ले आंखों में आंखें, अब ये गाना बना कैसे,
1: हाँ,
0: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको,
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, ही विल डाई, ही इज गॉट अ टर्मिनल डिजीज,
1: राइट राइट,
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए बिटवीन 12 and 4, तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं,
1: हाँ,
0: तो मैं लाउडली नहीं शुरू करूंगा, लाउडली बाद में होगा, तो मैंने ऐसे शुरू कर, देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले जीवन के पल है चार, याद रख मरने से पहले जीना
1: सीख ले,
0: सीख ले, तुरुरुम, तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे, तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है, हाँ, वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे,
1: हाँ,
0: शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूँ और बार बार घूम के इसी बात पर आता हूँ कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूँगी, ये महान लोग हैं, आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो,

0: शुरू हो गई मामू। सुबह हो गई
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग

और अब ये गाना, फिल्म का नाम अशोका, गुलजार और अनु मलिक की जोड़ी।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनू मलिक के संग
1: गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने।
2: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
1: जी।
2: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
1: बिल्कुल,
2: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज़ सीखी रहा हूँ, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, आज भी मेरा फ़ोन उठा लेते हैं।
1: हाँ।
2: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
1: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
2: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
1: बाबा
2: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूँ मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूँ उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है,
1: हाँ,
2: कि बोलों में तरस छुपी हुई होती है।
1: क्या
2: उन्होंने लिखा कि तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, टूररूरा
1: बाबा।
2: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोक का जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया, चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया
1: बिल्कुल।
2: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तो जो हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर,
1: हाँ।
2: तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
1: अनु जी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
2: ददांग
1: ददांग।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भी ये होंठ तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपने अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको देखो। हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके, लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: वही वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: yes.
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देखो।
1: हाँ।
2: गुजरात में देखो।
1: हाँ।
2: लोकगीत जो है
1: बिल्कुल,
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: yes.
2: आप चले जाइए साउथ में।
1: हाँ।
2: आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
2: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
1: यस।
2: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
1: लेकिन अनु जी, एक गाना ऐसा जो 7 समंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: ये सनू जी चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: फिल्म। ये गाना एक ही गाना था चाइना गेट में, एक ही गाना चाहिए था। इट वाज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो,
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे,
0: जी जी,
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम, ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं,
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी, खनखाने वाले आ गए, छम छम बाजे रे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है, छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, तो ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ।
1: और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी जी,
1: समीर अंजान साहब
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है, आपने समंदर पार बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट,
1: हाँ, स्वीट मेमोरी है कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म में।
1: हॉलीवुड में जब गया, वहाँ जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे निकोल किडमैन पर। वहाँ सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे,
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ ये, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर,
0: हाँ,
1: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल,
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि यह एक हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: Yes, और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब, करीब
1: हाँ, ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज़ चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने मुझे, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज़ है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नास्ते साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान हैं, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया
0: जी,
1: लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी है आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है। कवाल को मैं, जितने भी कवाल्स हैं हिंदुस्तान में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: बोला व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे,
1: विकेड। मैंने ऐसे ही बोला, जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं यहां से जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गया।
0: हाँ हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको।
0: हाँ।
1: दारी नंदी डारी नंदी डारी नंदी डारी नंदी डान डान डान डान डान डान, ये इतना सुनाया। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाटो भी नहीं, लगाटो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है। तारी नंदी दारी नंदी दारी नंदी दान, तो इतने छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां फिर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूशन तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है। तो मैं बोला ये जगह है देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने, वो आए उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ ये रिदम बिल्कुल,
1: तो रिदम कैसे होगी। तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबले आते ना टिपिकल ता ता ता ता ता, ये होगा मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे।
0: ओके
1: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुंग तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है रिकॉर्ड हुआ है तो तारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम र तनांग कचिक दिंग तंग कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
0: हाँ।
1: इस पर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके ऊपर
0: जी।
1: और फिर भाई साहब लगे उस पर
0: जी,
1: और हम बैठे हैं रात से सुबह हो गई
0: जी।
1: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है था ना, उसके जो चाटी का साउंड, उसको मुख ट्यून के सुर में लाना था। कौन से
0: हाँ।
1: कौन सा जो मुखड़ा है
0: बिल्कुल
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ। अब ये इसी सुर में द तुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग ता कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर जो गाना बना, फिर वहाँ साबरी ब्रदर्स वहाँ सोनू जी वो सब मिलकर जो फिर वो जो फरा नाची है
0: क्या बात है।
1: हाँ उससे बोले ये क्या गाना मिल गया। और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था। बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर, आई विल टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा। पिक्चराइज पर जो पर हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट्स, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बुला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारे साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था, और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ तरह सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला भाई गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूँ कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अनु मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये।
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूँ।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

ये गाना भी अनु मलिक का। विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है, विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अन्नू मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूँ, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहाँ मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऊपर वाले से कहता हूँ कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा,
0: बिल्कुल,
1: और ज़रूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 years इज़ नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अन्नू मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे और तब लंबी बातें करेंगे।
1: और 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूँ जो आज भी बोलता हूँ, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज़ पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात, कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ, बस एक बार कहना होता है अनु जी, आप
1: नाम क्या है इसका, विविध भारती
0: जी।
1: भारत जहाँ होगा, जहाँ भारत शब्द कहलाया जाएगा, वहाँ अन्नू मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
0: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है, और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं, जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।
1: हवाओं पे

बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये

0: जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज DTH, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन AIR और वेव OTT के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध भारती।
1: No.

विविध भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं, मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी

0: डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
2: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि कोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
5: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
6: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
1: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
7: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू
11: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
12: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
13: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
12: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
13: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
12: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
13: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
12: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
13: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
13: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
12: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
13: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
12: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
13: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
12: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
13: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
10: तो बताइए, आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
14: एक तो मुझको इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ।
10: जी जी।
14: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण।
10: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
14: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए के बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो, टायर
10: छाया गीत
14: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
10: जी।
14: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो जो जो, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो हैं, जो इतिहास में पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
10: जी।
14: और बहुत बहुत, इट वाज अ, इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने
10: जी। बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
14: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
10: बाल संग, नन्ही दुनिया वगैरह,
14: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया, कौन भैया होते,
10: बड़े भैया जी,
14: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
10: जी जी,
14: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहाँ से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
10: जी,
14: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
10: जी रेडियो ही मिला।
14: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ही मिला।
10: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई ख़ास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
14: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
10: और क्या
14: वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत ख़ास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
10: जी बिल्कुल। इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से,
14: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
10: अच्छा। हाँ, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं, और
14: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
10: जी जी। इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
14: नहीं नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
10: अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
14: अब जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता वो शहर, वो मुश्किल शहर है, अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहिए या पौधा बोना चाहिए, पर उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारी औकात है करने की
10: जी,
14: तो
10: क्या बात है।
14: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान और एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूँगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था
10: जी।
14: तो बट वहाँ के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा
10: जी।
14: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है राम भी है, मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है
10: जी।
14: अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहाँ शूटिंग की, मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा प्रोड्यूसर रुकेगा अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा, तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
10: एक
14: इलाहाबादी से ही लड़ रहे हैं
10: जी,
14: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
10: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
14: हाँ रोया तो
10: रोने वाले हाँ।
14: मुझे वहाँ पे डीएम के दफ्तर में बुला लिया
10: जी,
14: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है
10: जी जी,
14: और ये लोग यात्री होटल में हैं तोड़ देंगे उसका शीशा उनकी गाड़ियां, इस लड़के को इसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
10: ओ बाप रे।
14: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे, मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेकिन मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक देर बात हुई, मैंने मुझे फोन करने पड़ा,
10: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
14: और तो ऐसे ही है।
10: बहुत सारे मोतियाँ। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
14: जी बिल्कुल,
10: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये?
14: जी जी,
10: सुनते हैं।

0: हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज़ थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज़, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत ये है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो ख़ास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी, तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी
1: वो थोड़ी ज़्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं उनकी, फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सब के दिल के करीब हैं वो, वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी,
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बन, मतलब कि मेरी हम, मैं, इरफान, हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला, ये सब जो थे तब बहुत मिला करते थे हम लोग, हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियाँ मोटी मोटी,
0: अच्छा
1: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ी में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, वो मेरा कजन ब्रदर है,
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: वो तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की ज़रूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत जो उसकी है कि दीवार पर लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहाँ पहुँचे, मतलब एक्टिंग, आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहें।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो, मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है, मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किया। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
0: जी जी
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत तरह एक चीज़ नहीं होती, बहुत चीज़ों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। उस यूनिट पर जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं
0: जी,
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा था तो शायद मैं घबराता थोड़ा।
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: तो अच्छा हो गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे? क्या हुआ था फिर उसके बाद?
1: वो विपिन को जब मारता हूँ, कहाँ गाड़े थे उस वक्त तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है। तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कहे नहीं नहीं मारना मारना।
0: ओहो,
1: मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कहे नहीं नहीं कोई नहीं।
0: अच्छा,
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल।
0: अच्छा ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से।
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
0: जी,
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की जी।
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
1: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था मैं, मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में
0: जी।
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है, और आपकी ज़िंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नज़र किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज़्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी, और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे, तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज़ मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा।
1: वो इतनी खूबसूरत चीज़ थी कि जैसे उस जिसके टिफिन बॉक्स होता है ना, जैसे जिसमें हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल
0: डब्बे
1: होते हैं, उसमें वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था, और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता था, और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए, आप सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से, और फट से बना बना खाना मिलता था गर्म गर्म। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: कोयले में पका हुआ एक तो इधर नहीं बचता है, और बहुत इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वहीं की हैं।
0: बिल्कुल, भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था। तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सेलअप सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी वो 3:30-3 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले गया था, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था।
0: बिल्कुल।
1: ये उनसे मैंने एक चीज़ सीखी, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था, और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है।
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की,
0: ये सिखाया। और
1: जी,
0: और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का उनको वो है, वो एतराज करती है, इस पे कैसी फिल्म बनाते हो।
0: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील, जहाँ प्रेमालाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ, नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
1: अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
0: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं, और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, एक बचपन से मुझे फिल्में ही वो पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो होते हैं, जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी वैसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज़ थी मुझको थोड़ा, जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज़ चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ, लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
0: साहब वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
1: ये तो हासिल
0: का था। हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
1: जी जी जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए। शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: साहब बीबी के मैंने तीन पार्ट्स बनाए थे। तो जब पहला पार्ट बन रहा था, जब बनाया था, तो हमारे पास कोई काम नहीं था किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग। हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और फिर टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलते।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचार व सामयिक चर्चा रिले किए जाएंगे।

0: 31 तारीख तक कर दी है। इस बार की ई नीलामी में दिल्ली की विविधता और विरासत को दर्शाने वाले 30 अलग अलग स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें 9 फोटो फ्रेम, 9 स्मृति चिन्ह तथा 6 मूर्तियां, प्रतिमाएं और स्टैच्यू शामिल हैं। पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल pmmomentos.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 61 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 22 गेंद में 51 रन की नाबाद पारी खेली। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट झटके। पाकिस्तान के हसन नवाज ने 96 रन बनाए जबकि अराफात मिनहास और तेज गेंदबाज अहमद दानियाल ने 2-2 विकेट लिए। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश व वन विभाग साइकिलिंग ऑफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और शिमला साइकिलिंग एसोसिएशन ने वन्यजीव सप्ताह के तहत आज शिमला में एक साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली शिमला के रिज मैदान से कैचमेंट एरिया ढली तक आयोजित की गई। रैली के माध्यम से युवाओं को वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने, साइकिलिंग, फिटनेस और जिम्मेदार पर्यटन का संदेश दिया गया। 14 किलोमीटर लंबी ये रैली 2 रूट पर अंडर 19 और 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में आयोजित की गई। इस मौके पर साइकिलिंग ऑफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के मानद सचिव मोहित सूद ने कहा कि साइकिलिंग को फिटनेस, सतत परिवहन और जिम्मेदार पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वन्यजीव सप्ताह के तहत ही सोलन जिला की ग्राम पंचायत बसाल में आज एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। DFO प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मैराथन में विभिन्न स्कूलों के 80 बच्चों ने भाग लिया। इस मैराथन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया।
1: आज वन मंडल सोलन की तरफ से सोलन के बसाल क्षेत्र में 75वें वाइल्ड लाइफ वीक का सफल आयोजन किया गया और इसमें लगभग 80 से 90 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य जो आजकल वाइल्ड लाइफ क्राइम बढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट ओवर कम होता जा रहा है, ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक में इसकी जागरूकता पैदा करना था। ये सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेस्ट की तो है ही है। इसमें पब्लिक को अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे।
0: दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पूरे प्रदेश से वापस चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मॉनसून के प्रदेश से पूरी तरह वापस हो जाने की आज पुष्टि की। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून के दौरान 734.4 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा की तुलना में केवल 652.3 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। इस तरह प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून की वर्षा सामान्य से 11% कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में मॉनसून की सामान्य वर्षा हुई, जबकि हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून का आगमन एक सप्ताह देरी से 30 जून को हुआ था और मॉनसून की वापसी भी एक सप्ताह की देरी से हुई है। इस बीच प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहा शुष्क मौसम का दौर जल्द ही खत्म होगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 5 अक्टूबर से प्रदेश में वर्षा और बर्फबारी फिर से लौटेगी। विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में अंधड़, वर्षा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है मंडी जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है मुनीष सूद, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
0: मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उपचार और देखभाल में सहयोग के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। सरकाघाट उपमंडल में योजना के तहत 104 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें बलद्वाड़ा तहसील के 56 और सरकाघाट तहसील के 48 लाभार्थी शामिल हैं। पार्किंसोनिज्म, कैंसर, पक्षाघात से स्थायी दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और गंभीर गुर्दा रोग जैसी निर्धारित बीमारियों से पीड़ित पात्र लोगों को इसका लाभ मिलता है। कंडियोल निवासी रतन सिंह की कैंसर पीड़ित पत्नी कमला देवी, नवाही की सरोज और लंगलेहड़ के हुकम चंद को मिल रही सहायता दवाइयों और देखभाल के खर्च में सहारा बनी है। लाभार्थियों ने कहा कि बीमारी के कठिन दौर में सरकार की ये नियमित आर्थिक मदद परिवारों की चिंता कम करने में उपयोगी साबित हो रही है। बीते कल मंडी जिले में गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सेरी मंच से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सद्भाव का संदेश दिया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुई प्रभात फेरी में स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों, कलाकारों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। रघुपति राघव, राजा राम, देशभक्ति गीतों और महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जय घोष से शहर का वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर हो गया। गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखने तथा गांधी जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में मशरूम उत्पादन ने अंकित कुमार के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह खोली है। पुराना बाजार निवासी अंकित ने महज 200 बैग बटन मशरूम से शुरुआत की थी। प्रशिक्षण और अनुभव के साथ उनका कारोबार बढ़ता गया और आज वे करीब 7,000 बैग में मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। खर्च निकालने के बाद उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह की शुद्ध आय हो रही है। उन्होंने व्यवसाय का विस्तार करते हुए पंजाब के भरतगढ़ के पास भी नई मशरूम इकाई स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत उन्हें मशरूम शेड निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिली। विभाग के अनुसार सुंदरनगर में योजना के 26 लाभार्थी हैं, जिन्हें प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। अंकित ने युवाओं से स्वरोजगार और कृषि आधारित व्यवसायों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि मेहनत, प्रशिक्षण और सही दिशा से छोटी शुरुआत को सफल उद्यम में बदला जा सकता है। गत दिनों मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में कृषि विभाग की ओर से कृषि में रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक की उपयोग पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर में आयोजित प्रशिक्षण में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 19 कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देकर फसल निगरानी, संसाधन प्रबंधन और कृषि कार्यों में इनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने रिमोट सेंसिंग, गूगल अर्थ, GPS और कृषि में इनके अनुप्रयोगों की जानकारी दी। प्रतिभागियों को बीज गुणक, फार्म और ओहर का भ्रमण करवाकर ड्रोन तकनीक के व्यावहारिक उपयोग और संचालन का प्रदर्शन किया गया तथा ड्रोन उड़ाने का अभ्यास भी करवाया गया। अधिकारियों ने आधुनिक तकनीकों को कृषि विभाग में अपनाने की संभावनाओं और व्यावहारिक चुनौतियों पर भी चर्चा की। प्रशिक्षण के समापन पर आधुनिक तकनीक को कृषि क्षेत्र से जोड़ने पर बल दिया गया। बीते दिनों मंडी जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े उद्यमियों के लिए हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव के अवसरों पर चर्चा हुई। बगला में आयोजित सम्मेलन में मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिलों के उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य उद्यमियों को साझा मंच उपलब्ध करवाकर उनकी व्यावसायिक जरूरतों, समस्याओं और संभावित समाधानों पर संवाद करना रहा। इसी के साथ मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है, लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो ये है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
5: जी बिल्कुल। तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण दे के बताइए हमारे श्रोताओं को कि
4: लिखना तो एक्चुअली सबसे बड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होके गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
5: अच्छा।
4: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं। तो मैं, मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसा नहीं, मेरी सारी पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉपी है मेरी,
5: ये आप कह रहे हैं ना।
4: नहीं, सच बात है, उसमें उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
5: जी,
4: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया वो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग, उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोगों की, जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा तो अगर 15 पिक्चर हैं तो 4 ही पिक्चरें होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
5: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं।
4: मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूं।
5: जी
4: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ, कई फिल्में मिस हो भी, अब सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी हैं, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
5: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
4: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन।
5: जी जी,
4: जिसके गाने
5: बहुत ही खूबसूरत
4: गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे

0: है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
1: क्या बात है।
0: अब वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो पर्सू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने। वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्म मेकर बनते वो।
1: जी जी।
0: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें। तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे।
1: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएं? शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का।
1: जी जी।
0: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग।
1: जी जी। तो वही गाना सुनते हैं।
0: ये मेरे दिल में आज का

0: साहिर साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज़ और
1: दाग,
0: दाग फिल्म, तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो वो, उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी,
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य तिग्मांशु, तो तेज जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो अपने सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी,
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी मेरा नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो
0: और
1: धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है, तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रिलेवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब अब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहाँ से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
0: जी।
1: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत मिलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं, और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चलना है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां, और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
0: जी,
1: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
0: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं तिग्मांशु जी। एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं
1: जी। जी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
1: अब मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊँचे लेवल पर रखता हूँ, इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता
0: जी जी।
1: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
0: बिल्कुल,
1: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है
0: जी जी।
1: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वो कई कारणों से करते, कईयों को लिरिक्स बहुत पसंद आती हैं। अब पुराने ज़माने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे वो सबसे ज़्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
0: क्या बात कही आपने,
1: लिरिक, जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज वो लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री
0: जी। बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर पाते,
1: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख रहे ना, इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर
0: जी। बिल्कुल,
1: तो पुराने राइटर से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरू सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
0: जो सबके समझ में
1: देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है, है ना
0: जी।
1: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता
0: जी जी। तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे? और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से, हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
1: देखिए, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज़्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
0: जी,
1: बुरा काम ही होता है ज़्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोशिश करते रहो बस
0: जी,
1: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है, कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो, वही इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
0: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
1: ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में अब गाने खत्म हो गए
0: जी,
1: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों, ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
0: जी।
1: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाने आप रख नहीं सकते, कि तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, एक अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
0: जी।
1: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक, तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ
0: जी जी।
1: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर का सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे
0: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते।
1: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर भी, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए
0: जी जी बिल्कुल। तो
1: गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है, फिर उन्होंने बड़ी रमेश सिप्पी शोले ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल, देख लीजिए कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना
0: जी बिल्कुल,
1: छोटी फिल्म है देख लीजिए आप।
0: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
1: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर मैं लोगों को कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना
0: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
1: जी,
0: ये वाला गाना आपको आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: और डायलॉग्स किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो होते हैं
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी जी
1: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना सुना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी कहाँ,
0: क्या बात है,
1: और वे तुलका लेकर रुको, ये जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ क्योंकि एक्चुअली बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है। तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो
1: अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा ये सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर हैं, परदेश में हैं, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज़्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती।
1: हाँ, हाँ,
0: तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ ख़ास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जब पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था, उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं।
1: हाँ, उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत ख़राब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका एक कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
0: तो जी बताइए। बिल्कुल।
1: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, फिर ये क्या, वही जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
0: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
1: जी
0: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
1: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे, उसके कारनामों से आप थोड़ा
0: इंस्पायर हुए,
1: इंस्पायर नहीं वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते, लेकिन कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
0: तो समाज के सामने सच्चाइयाँ लाना?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
0: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
1: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
0: जी बिल्कुल,
1: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता है जो आदमी खुद बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने दो मुझे दोस्त दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त दो दोस्त रखे
0: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे।
1: हाँ, बाकी उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जी, जी जी जी।
0: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
1: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया। मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मेरे एक बड़ा वो बैन शायद भी हो गया था, एक शो था तांडव जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत चीज़ें दिखा दी, उसके वजह से उसमें सैफ था। मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले मैं तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बतौर लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था। तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
0: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और बताइए आपको पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज़्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: आप वो दिल तो है दिल,
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का ये भी बड़ा यूनिक सॉन्ग है
0: जी,
1: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
0: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: आपने कई बार
1: लता जी गा रही, मैं गा सुन ला।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: तिग्मांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज़्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी, लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के, तो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सब ने टीवी किया। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था, उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था, 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज़्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो आप
1: कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
0: दुलारे बेटे थे,
1: दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में जो 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछे जाओ।
0: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
1: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
0: तकलीफों से नहीं गुजरे,
1: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो इनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ, मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
0: जी।
1: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहाँ, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो डिग जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता था उनके असिस्टेंट, ठीक है।
0: जी।
1: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
0: जी जी
1: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं। नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है सब, नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
0: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
1: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो। लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कर कहलाओगे। आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन, मैंने जब NSD में मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था।
0: जी जी,
1: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल वोल करके जिंदगी खत्म हो जाती।
0: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीवी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
1: ये पार्ट टू का गाना है, इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ा हुआ, उसने कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे हैं संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं।
0: जी सुनते हैं ये गाना।
2: प्रपंच है हर स्वार्थ का ये मंच है, यहाँ रक्त से मिटे है शोध, लोभ मोह काम क्रोध, यहाँ रक्त से मिटे है शोध, लोभ मोह काम क्रोध, रक्त से मिटे है शोध, लोभ मोह काम क्रोध, यहाँ दोष भी निर्दोष है, प्यार में भी रोष है, है ईर्षा ही शब्द कोश है।
3: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है।

आप चाहते हो ना कि जंग हो, होगी, कम आसान होगी, आपकी कसम।

0: ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: ऐसी कोई बहुत लीक से हट के नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल एक जो चलने वाली फिल्में होती हैं ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फ़र्क है सिर्फ। जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फ़र्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग।
0: जी।
1: वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीज़ें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द ईयर्स एक तो आपके खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से किसी नए आदमी से मिलके कोई फिल्म देख के कोई नॉवल पढ़ के आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कि एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीज़ों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
1: जी जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता
0: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया आपको मालूम है कैसा होना है, वहाँ पे कठिनाई होती है। अगर आप ऐसी जगह पे जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहाँ बिताया
0: जी।
1: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका बांदा वाला रीवा सतना मध्य प्रदेश यूपी इलाहाबाद के भी बहुत नज़दीक ही है
0: जी जी।
1: तो वहाँ पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहाँ पे पुलिस भी थी हमारे साथ, तो बैठे रहते थे अपने जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जात के मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार ऐसे रस्सी होती है वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वहीं नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी
0: जी।
1: अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहाँ देखा, वहाँ पे एक स्पॉटेड डियर था बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें वहाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
0: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाएं?
1: जी सुनाइए, धाएं धाएं
0: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफ़ी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई ख़ास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने वहाँ पर एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई दिया।
0: अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है, तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नज़रिए से कि एक अच्छी फिल्म दें दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियोपॉलिटिक्स पे किताबें, इस पर मैं ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है फिक्शन बहुत
0: जी।
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया और अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी। और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पैगाम दूँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिल के इस खूबसूरत दिन में, आज भारती के 70 ईयर्स पूरे हुए हैं उसको याद करते

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात जी। अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों,
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
3: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, मैं जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल,
3: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे
2: जी।
3: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
2: जी,
3: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
2: जी,
3: उसमें
2: जी।
3: मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। हाँ, हाँ। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहाँ आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदा के जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही हूँ। कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूँगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस उन्होंने ही मुझे, अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
2: जी।
3: तुम ताना नाना ताना तर तर ये दिल है दीवाना
2: जी।

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी और बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सरगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी,
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा, बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो। आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तुतु तु तु तु
1: हाँ
0: तारा में
1: हाँ
0: हमें दिखाई दी थी, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
0: हूं, बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में,
1: जी
0: वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती
1: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा,
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई, यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ,
0: है
1: वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना?

0: और जरूर आ गई आवाज में, यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी
0: है तो।
1: जी, तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी, पर जी, एक अलग रूप से जी पाती,
0: से
1: उनके,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को, यस। क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज़्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूँ मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी
1: नहीं करूंगी। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तू तू तू तू।
1: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना जी, जी। फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बिताए, तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊँगी, दिस इज़ नॉट दी एंड, मैं आऊँगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा ज़रूर। क्योंकि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहाँ जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी ज़िंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
0: है ना? सही कहा।
1: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तु तु तु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहाँ
0: जी के। जी
1: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
0: हुआ।
1: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती हैं, है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज़ है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं
1: क्या
0: धुआं,
1: बात है, क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर
1: माधुरी जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया
1: नोट की।
0: था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहाँ आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस से,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप,
1: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंद और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है कि
1: हाँ
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये
1: क्या बात
0: किसी
1: है।
0: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ
0: खुद नहीं गाया, मतलब
1: हु
0: इतने वो
1: बहु,
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ हु बहु
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: जी। और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना
0: हाँ
1: कितना,
0: बाप
1: तो
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना, वो सिर्फ, मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया।
1: जी
0: छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारी इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो आईक्यू है उसका जो
0: बहुत कम है,
1: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े, मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ये गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें तो
0: मेरा
1: यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज प्लीज
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज,
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे, इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
0: आई एम
1: वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ,
0: जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि
1: जी, जी.
0: मुझे वो गाना मिल जाता
1: नहीं,
0: उस
1: मैंने ये
0: गायिका
1: दुख
0: का।
1: कभी किया भी नहीं मंदाकिनी जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे,
0: बिल्कुल
1: हमारा
0: बिल्कुल,
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
0: और उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती हैं।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ, यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और
0: सही
1: आज
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया,
0: जी
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी 2 लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे ते पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच गहिवरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया, वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है, और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा।
0: जी,
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी ये 1 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूँगी। बात वहीं ख़त्म हुई, फिर एक हफ्ते वो फ़ोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फ़ोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास है, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे।
0: क्या
1: तो ये
0: बात
1: कितनी
0: है
1: बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूँगी, ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या
0: क्या
1: हो
0: हो
1: सकता है
0: सकता है।
1: मंदाकिनी जी,
0: जी बिल्कुल
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ,
0: बिल्कुल सही
1: है ना
0: कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले,
1: जी।
0: बताइए।
1: मेरे बचपन में जब सुषमा
0: हाँ
1: श्रेष्ठा के नाम
0: जी
1: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
0: जी,
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती, झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्नी आले काई, स्वप्न

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
1: तो
0: और
1: मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफ कोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज की उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे, क्या मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज़ मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ।
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता
0: हाँ
1: पड़ना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: ऊंची है बिल्डिंग, टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं, टाडा रा रा रा रा रा रा, आ जा आ जा आ जा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: जी, अनु मलिक के साथ
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
0: जी।
1: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया,
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, हो माय जानू, आई लव यू।

0: ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं,
1: और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
1: बेसिक्स बहुत
0: हम सब
1: मजबूत थे,
0: म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि
1: नहीं,
0: है ना। अब आप बोलोगे कि अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरी रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग, म्यूजिशंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे ही
0: माहौल
1: होता था, वो
0: क्यों
1: गर्माहट।
0: क्यों, क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना
1: किया
0: पड़ेगा।
1: जाएगा।
0: तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम
1: हाँ,
0: करते थे कि हमसे कोई गलती
1: गलती
0: ना
1: ना
0: हो,
1: हो जाए।
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, कि एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि
1: जो एक
0: बच्चे
1: बहुत असर पड़ा है,
0: बहुत मेहनत
1: अच्छे
0: से
1: आ रहे
0: काम
1: हैं।
0: करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है।
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का ज़माना है, क्या पूरा गाना गाने पर
1: तुला हुआ है,
0: तुला हुआ है, अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहाँ अभी, मैंने देखा है।
1: मतलब संगीत की ये हालत
0: हाँ
1: अगर हो जाएगी तो एक नया
0: तो
1: सिंगर
0: वो
1: क्या गाएगा,
0: पॉजिटिविटी आएगी
1: वो
0: कहाँ से,
1: सीखेगा कहाँ
0: है
1: से
0: ना।
1: आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
1: जी जी
0: जाएगी,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नीयत, शायद हो सकता है नीयत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार बन
0: इतना
1: जाना।
0: कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो।
1: जी, वही
0: तो हमने
1: बात।
0: सराहना करनी चाहिए
1: हाँ,
0: बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको।
1: उनका भी
0: हाँ
1: करियर जो बनता
0: हर बार
1: है।
0: उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
1: जी,
0: है
1: एक
0: ना।
1: गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए।
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
0: अखियाँ तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखियाँ तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो वा तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो वा तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है आज की, पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं,
0: पर
1: बिल्कुल
0: आज का ये मौका मैं
1: नहीं,
0: गंवाना नहीं चाह
1: और हम
0: रही।
1: भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: लवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो।

0: नंबर वन, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
0: स्टेज
1: है
0: पे, यही खास है मेरे लिए तो, यही खास है
1: जी।
0: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग,
1: अच्छा
0: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा है, बहते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
1: जी,
0: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
0: प्लीज
1: का।
0: चने के खेत में
1: अरे
0: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूम

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी,
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: 92 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 Gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony for a dairy plant to be built in Ujjain at a cost of 255 crore rupees. He said that a central laboratory has been set up in Bhopal at a cost of 12 crore rupees and a mini dairy plant will be built in Shivpuri. Before the Gopalak Sammelan, the Union Minister also inaugurated an exhibition by the Madhya Pradesh Police on the new criminal laws at the Bhel Dashara Maidan. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Home Minister Amit Shah said agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Mr. Shah added that from 2019 till August this year, a total of 288 fugitives from 36 countries have been brought back to India. Delhi police has said the section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in New Delhi district to ensure public safety, public order and smooth traffic movement. In a public notice, DCP New Delhi said unauthorized gatherings, public speeches, shouting of slogans, processions, demonstrations, dharnas and other specified activities are prohibited. It also said no permission has been granted for any protest scheduled for today, nor has any prior intimation regarding any such protest been received by New Delhi District Police. Delhi Police has requested citizens to strictly comply with the order and cooperate with them. In Andhra Pradesh, four workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. Two workers died on the spot while three others were critically injured and shifted to a nearby hospital. Two of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. The Embassy of India in Oman coordinated rescue of five Indian nationals on board the Kuwait-flagged tanker MT Kazima 3 struck by a projectile in the Strait of Hormuz. In a social media post, the embassy said all five Indian nationals have been shifted ashore safely. It thanked Omani authorities for their continued support and assistance. Indian wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final in the Asian Games at Nagoya in Japan today. The 23-year-old Indian, who had won a bronze at the Hangzhou Asian Games, showed immense tactical acumen to thwart a tricky Han and complete his climb to the top of the podium. Earlier, India won the gold in men's cricket, defeating arch rivals Pakistan in the T20 cricket final at Nishan. With these impressive performances, India stands at fifth position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 82, including 20 gold, 26 silver and 36 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games. In a series of social media posts, he said this is indeed a joyous occasion for the nation. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharathors on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन।

बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी भजन आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हो चुके हैं और अब समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवा मंच का।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के इस अंक के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनुराधा। युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम पूछते हैं आपसे कुछ सवाल। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की घंटी बजाने के लिए क्योंकि शुरू हो रहा है हमारा मज़ेदार सेगमेंट हेलो जीनियस। सवाल होंगे आसान से लेकर थोड़ा दिमाग घुमाने वाले, तो देखते हैं आज कौन बनता है हमारा जीनियस। और आज के इस कार्यक्रम में अगर आप भी बनना चाहते हैं जीनियस तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391। हेलो, लीजिए। हमारे जो पहले जीनियस थे उन्होंने जल्दी ही साथ जो है वो छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आप सभी को हमारे स्टूडियोज़ का नंबर पता है, फ़ोन नंबर है 01892224391। और सबसे पहले आपको आज का पहला सवाल हम बता देते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे कॉलर जो हैं वो बड़े जल्दी में हैं और वो सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले इनसे बात ही कर लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आरव बोल रहा हूँ।
0: आरव, कहाँ से बोल रहे हो?
1: डेरी से।
0: क्या करते हो आप?
1: पढ़ता हूँ।
0: कौन सी क्लास में?
1: UKG, फर्स्ट टू।
0: फर्स्ट में पढ़ते हो?
1: यस मैम।
0: अच्छा, और फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है ये बताइए पहले।
1: पेंटिंग अच्छी लगती है।
0: पेंटिंग अच्छी लगती है?
1: यस मैम।
0: अच्छा, तो आपसे पहला सवाल पूछें हम।

0: और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। पीछे से आपकी मम्मा बुला बता रही हैं, ये आपको भी आते हैं सवाल,
1: बता
0: चाचू बता रहे हैं।
1: रहे हैं।
0: अच्छा, तो आपको भी आते हैं, चाचू से ही पूछने हैं सारे सवाल। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से और अच्छे से तैयारी करके आना, ठीक है? ओके, बाय बाय। तो श्रोताओ, हमारे जो श्रोता हैं, नन्हे नन्हे से युवा हैं, वो तैयार रहते हैं कि कब हम उनसे सवाल पूछें और कब वो हमारे सवालों का जो है वो जवाब दें। और हमारे जो युवा साथी हैं, वो आजकल तो जो दौर है वो है नई नई जानकारियाँ हासिल करने का। अगर आपके पास नई नई जानकारियाँ हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से

0: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम पूछते हैं आपसे छोटे छोटे से और आसान से सवाल, और उन सवालों के जवाब आप हमें देते हैं। तो अगर आप भी हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो देना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391। इस नंबर पर कॉल करके आप भी जीनियस बन सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हम छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछेंगे, उनके जवाब आपको देने होंगे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो,
1: हेलो
0: आप फोन रख के कहीं चले गए हो? पहले थोड़ा सा रेडियो से दूर आ जाइए, पहले रेडियो से दूर आइए, फिर बात करेंगे। हेलो जी, आ गए हो आप रेडियो से दूर? थोड़ी से दूर आओगे तभी बात कर पाएंगे, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी हमारी आपसे। ठीक है, चलिए अपना नाम बताइए पहले।
1: शानवी पठानिया,
0: कहाँ से बोल रही हैं शानवी?
1: नूरपुर,
0: नूरपुर से। और कौन सी क्लास में हैं आप? सिक्स्थ में हैं, तो सिक्स वाला क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपसे, है ना? चलिए ये बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है ना,
1: जी
0: उसका प्राकृतिक उपग्रह क्या है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? कितने सैटेलाइट हैं वैसे ये बताइए पहले अर्थ के।
1: नहीं पता।
0: नहीं पता? चलिए बता, हम बताते हैं कि अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। और अब आपको पता है वो सैटेलाइट कौन सा है? मून। वेरी गुड। आपको ये पता है कि नेचुरल सैटेलाइट मून है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछे हैं फिर आपसे। चलिए अब ये बताइए कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पढ़ा है आपने साइंस में?
1: नहीं, अभी ये नहीं करवाए हैं।
0: अच्छा, ये नहीं कराया है आपको? अच्छा, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है?
1: लोटस,
0: और हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड का?
1: माउंट एवरेस्ट।
0: माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का?
1: एशिया।
0: एशिया। वेरी गुड। आपसे तीन क्वेश्चन पूछे और आपने तीनों ही प्रश्न जो हैं वो सही दिए हैं, सही उनके आंसर दिए हैं, तो बहुत अच्छे। यूं ही अपनी जो जीके है उसका नॉलेज और भी बढ़ाते रहिए और हमसे बात कर रहिए। अगली बार फ़ोन कीजिएगा, ठीक है? तो हमारे छोटे छोटे से श्रोता हैं और वो हमें कॉल करते हैं, हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके और उनके क्वेश्चन के आंसर सुन के कि वो कितनी जीके की नॉलेज रखते हैं और आगे चल के उनको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आप सिग्नल में नहीं हैं, पहले सिग्नल में आइए फिर बात कीजिए। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
2: रमन बोल रहा हूँ जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं रमन जी?
2: अमेरिका से।
0: क्या करते हैं आप?
2: मैं रिटायर हूँ सर।
0: रमन जी, ये हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम है, अगर आपके पास कोई युवा साथी है तो उनसे बात करवाइए, उनसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछेंगे हम। जी चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप दूसरे कार्यक्रम में हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। और हमारी गुजारिश है कि हमारे जो युवा साथी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: शिवन्या,
0: शिवन्या, कहाँ से बोल रही हैं?
1: लौटी से थर्ड।
0: क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं पहले ये बताइए। थर्ड में पढ़ती हैं? अच्छा, तो आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा फिर, है ना? चलिए ये बताइए सबसे पहले, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं?
1: 28 स्टेट।
0: 28। अच्छा ये बताइए, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ नेशन इन इंडिया?
1: महात्मा गांधी।
0: वेरी गुड, आपने तो दोनों सवाल ठीक आंसर दिए हैं उनके। अच्छा, थर्ड बताइए, व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे?
1: रिपब्लिक डे 15 अगस्त।
0: नो, गलत हो गया आपका रिपब्लिक डे वाला क्वेश्चन। कंफ्यूजन
1: रिपब्लिक
0: होती है। हाँ?
1: मुझे लगा दूसरा पूछा होगा।
0: हाँ नहीं, रिपब्लिक डे और हमारा दूसरा कौन सा होता है बताओ? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को मनाते हैं और रिपब्लिक डे 26, बताओ आगे,
1: जनवरी।
0: जनवरी को मनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दो सवाल तो अच्छे किए, अच्छे से सवालों का जवाब दिया, अच्छी बात है। आप यूं ही तैयारी करते रहिए और हमसे बात कीजिए, है ना, और भी तैयारी करके आना अगली बार। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो हमारे छोटे छोटे से जो युवा साथी हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, अपने जो जनरल नॉलेज है उनका हमें बता रहे हैं, और हमारे जो रिंग टोन है लगातार बजती जा रही है। एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: अभिजीत।
0: अभिजीत, कहाँ से बोल रहे हो?
3: नूरपुर।
0: हाँ जी,
3: नूरपुर।
0: नूरपुर। पहले आप रेडियो से दूर आइए।
3: आ गया।
0: आ गए आप?
3: नहीं
0: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: जी, एट
0: 8th में। अच्छा, तो आपको 8th वाला क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अच्छा, हमारी इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है ना, कौन सी है वो?
3: इसरो।
0: वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से?
3: कार्बन डाइऑक्साइड।
0: अच्छा, और व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं, गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो ए और यू होता है। ठीक है, चलिए अभी 3 ही सवाल करेंगे, अगली बार फिर तैयारी करके आना आप। ठीक है, ओके। तो श्रोताओ, बातें और हमारे जो क्वेश्चन है वो तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ, और फिर आपसे फिर से बातें करेंगे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
3: दीदी जी, राधे राधे।
2: राधे राधे, कौन बोल रही हैं?
3: वंश।
2: वंश बोल रहे हो?
3: हाँ जी।
2: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: थर्ड।
2: थर्ड में पढ़ते हो, तो थर्ड वाला क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, है ना?
3: हाँ जी।
2: चलिए आपसे क्या पूछें, चलिए ढूंढते हैं आपके लिए एक सवाल, आसान सा सवाल। और अच्छा ये बताइए, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
3: बनियन ट्री।
2: कौन सा ट्री?
3: बनियन ट्री।
2: अच्छा, और ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
3: महासागर।
2: महाद्वीप, महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन सा है सबसे बड़ा?
3: एशिया।
2: एशिया, वेरी गुड। और अब ये बताइए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम है ना हमारा, उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है?
3: पता है।
2: बताओ फिर कौन सा है?
3: जुपिटर।
2: वेरी गुड। बृहस्पति, उसको हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए वंश। अब आपसे बात इतनी ही करेंगे, आपको एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे इसके बाद, ठीक है?
3: दीदी जी, मेरे भाई से बात।
2: आपके भाई भी बात करना चाहते हैं?
3: हाँ जी।
2: जी बताइए क्या बात करना चाहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे।
3: हाँ जी।
2: चलिए दीजिए उनके पास फोन।
4: हेलो।
2: कौन सी क्लास में पढ़ते हो और अपना नाम बताओ?
4: एट्थ में पढ़ता हूँ, अंश गुलेरिया
2: नाम है। अंश गुलेरिया
4: जी।
2: अच्छा आपसे पूछते हैं, अब ये बताइए पानी, वाटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सूत्र?
4: सिंबल साइंस में।
2: हाँ साइंस में, कैसे हम अगर वाटर को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं?
4: H2O।
2: भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है?
4: रविंद्रनाथ टैगोर।
2: और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है?
4: शिमला।
2: वेरी गुड, आपने तीनों के तीनों सही जवाब दिए। और यूं ही अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और ये कार्यक्रम सुनते रहिए, ठीक है?
4: थैंक यू।
2: चलिए बहुत अच्छी तरह से हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे जुड़ते हैं और अपने जो सवाल हमने किए होते हैं उनके जवाब हमें देते हैं, तो यूं ही सवालों के जवाब देते रहिए। और समय हमें आगे इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम एक और भी कॉल उठाएं, तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा, कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां का। किसान वाणी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम हिम दर्शन आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30

से मिनट पर कार्यक्रम साहित्य भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और रात्रि 10 बजे का समय रहेगा दिल्ली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार में अब तक 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीनों में 4,000 शिक्षक और भर्ती होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और इन क्षेत्रों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस जारी रहेगी और सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए

0: जल्द नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का वास्तविक अर्थ गरीब की आवाज सुनना, उसके दर्द को समझना और उसके अनुरूप योजनाओं को लागू करना है।
1: जहाँ जनता की आवाज को सुना जाए, जहाँ गरीब व्यक्ति की पीड़ा को सुना जाए और दिमाग में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहला व्यवस्था परिवर्तन, जो दूध था आपका 32 रुपए लीटर बिका करता था और दूध के मूल्य में महज कभी 1 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, कभी 50 पैसे की बढ़ोतरी होती थी। और जब मैंने पहली बार दूध में 9 रुपए बढ़ाया, सभी अधिकारियों से मुझे विरोध झेलना पड़ा। मैंने कहा कि इसका पैसा मैं अपने सुधारों से लाऊंगा।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में उद्योगों की जरूरतों और उपलब्ध मानव संसाधन के कौशल के बीच मौजूद स्किल गैप एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए प्रदेश सरकार युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दे रही है। धर्माणी आज घुमारवीं में सीर उत्सव के मौके पर आयोजित रोजगार मेले के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के उद्देश्य से मील ऐप भी लॉन्च की। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं और उद्योगों के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करेगा। रोजगार मेले में 16 से अधिक कंपनियों ने 400 से अधिक युवाओं के साक्षात्कार लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने आज एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिरमौर जिला में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 शिक्षकों को आज नाहन में एक समारोह में उपायुक्त ने सम्मानित किया। इन शिक्षकों को विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही डिजिटल और विजुअल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा और संपर्क फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से स्कूलों में चलाया जा रहा है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों में पढ़ाई की नई तकनीकों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने शिक्षकों से स्कूलों में उपलब्ध डिजिटल और अन्य उपकरणों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
2: टीचर्स अवार्ड यहाँ पे सिरा सिरमौर में 6 शिक्षकों को दिया, जिन्होंने जो संपर्क फाउंडेशन और जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत अपने जो स्कूल्स में जो क्लासेस दी जा रही हैं उसमें डिजिटल बोर्ड पे जो क्लासेस दी जा रही हैं और जो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। बेसिक आइडिया ये है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो कुछ अच्छा सीख के जाए, और ये जो संपर्क फाउंडेशन ने जो कोर्सेज इनबिल्ट किए हैं वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे जिसका सिलेबस हमारे जो एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस है उसके मैप्ड है, तो बच्चे विजुअली चीजों को देखते हैं, उसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को वर्ष 2026-27 के लिए कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर ने इस पद पर फिर से नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से जिम्मेदारी मिलना उनके लिए विनम्रता और कृतज्ञता का विषय है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस सत्र में प्रतिनिधिमंडल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, द्विपक्षीय वार्ताओं और नीतिगत चर्चाओं में हिस्सा लेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम सुरमई सांझ का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की युगल स्वरों में फिल्म प्रेम ग्रंथ से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां का।

कार्यक्रम दे सारे किसान भाई बहन जो साड़ी राम राम राम राम सारे हमारी जड़ियां भाई हैं भैन सारे जो ही कने भाई भैनों आज का कार्यक्रम लेके हाजिर हैं अहाँ कने ठंडी ठंडी हवा चली हो कने तुसा सुना कर दे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मौजां कराई दियां कने मौजां तो लगी हैं है ना जलू अहाँ पुजी आंदे तो मौजां लगी ही आंदियां कने सोगी सोगी तो हाँ ठंडी ठंडी हवा चली कने चाय दी चुस्कियां लैनियां कने सोगी सोगी जलू साड़ा प्रोग्राम सुनना है तो बड़ा ही मज़ा आंदा है ना कने सोगी सोगी जलू अहाँ लोक गीतां दी धुन कने गाने सुनते न तो अहाँ दा जड़ा मज़ा है और भी दुगना हो जाता है ना कने कार्यक्रम जो अहाँ आरंभ तो करना है लेकिन उससे पहले थोड़ा जड़ा है मनोरंजन करना है सबसे पहले तो प्यारे दे लोग बजने कने अहाँ कार्यक्रम दा आरंभ करना है कने इसके बाद अहाँ दी अगली अपनी जी गलबात ऐसे करनी है तो आइए आइए अहाँ सुन देने प्यारा दिया लोक भजन।

0: किसान साथियों, इस प्यारे दे लोक भजने कन्नै एक बारी फिरी तुहाड़ा स्वागत है तुहाड़े ही कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां च। कन्नै किसान साथियों, हुण अहां करनी है कार्यक्रम विच अज दी गल्लबात करनी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर। किसान साथियों, जियां कि तुस सारे जानदे ने कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार दी इक योजना है जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 च होई थी। कन्नै इस योजना के तहत सरकार किसानां जो मृदा कार्ड जे रिन से जारी करती है, कन्नै सोगी सोगी इसकी योजना भी बना करती है जिस विच किसानां जो निवेश उत्पादन च सुधार करने लई पोषक तत्व कन्नै उर्वरकां दी फसलवार सिफारिश करती जाती है। इस विच सारे देश भर विच मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विच मृदा परीक्षण किया जाता है। कन्नै इस विच विशेषज्ञ जिहड़े हन से मिट्टी की शक्ति कन्नै कमजोरियां का विश्लेषण करते हैं, यानी कि इतने दिखते हैं कि तुहाड़ी मिट्टी कितनी की खरी है, तिस च कितनी नमी है, या फिर तिस च कौन दिया पोषक तत्व जिहड़ा है सै घट है, कन्नै तिस च कौन दिया पोषक तत्व पौना है, है ना। कन्नै परिणाम जिहड़ा भी होना है सै तिना जिहड़ा तुहाड़ा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना ना तिस विच लिखी देना है। कन्नै भारत सरकार द्वारा इस योजना विच 14 करोड़ किसान जो कार्ड जारी करने की योजना बनाई गई है। कन्नै किसान साथियों, इसी संबंध विच अज हाँ एक भेंटवार्ता भी सुननी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर ही, तो आओ पहले सुनते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर यह भेंटवार्ता, कन्नै इसके बाद जी सह अपनी गलबात सह हाँ अगे बढ़ानी है।
1: जैसे हम मनुष्यों का जो है एक स्वास्थ्य कार्ड बनता है जिसमें पूरा ब्यौरा होता है कि आदमी की सेहत कैसी है, उसको कौन सी बीमारी है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इत्यादि बातें जो होती हैं, ऐसे ही एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसमें किस तरह का ब्यौरा होता है, क्या क्या बातें होती हैं, इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव संदल। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। तो ये स्वास्थ्य कार्ड क्या है डॉक्टर साहब?
2: देखिए ठाकुर साहब, जैसे आपने बताया कि हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले टेस्ट लिख देता है, कुछ टेस्ट हमारे को लिख देता है, जिससे कि उसको एक आइडिया हो जाता है कि जो भी बीमारी हमें है उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, कितना तक इसको इस बीमारी ने नुकसान कर दिया है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसी तरीके से मिट्टी का, जैसे उसके भौतिक गुणों का हमें पता लगे, रासायनिक गुणों का पता लगे और जैविक गुणों का पता लगे, एक कार्ड में एक कंपैक्ट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जब कागज पे आ जाए, ताकि जब भी किसी वैज्ञानिक या किसी विशेषज्ञ के पास, फार्मर या कोई और जाए, तो एकदम से उस कार्ड को देखकर वो ये बता सकें कि इस भूमि में कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं और अगर कोई फसलें लगाई जा सकती हैं तो कितने कितने खाद कब कब डालनी है और कितने साल के बाद उस मिट्टी की जांच करानी है, इसका उसको आइडिया मिल जाता है। जैसे डॉक्टर को रिपोर्ट देख के आइडिया मिल जाता है, उसी तरीके से विशेषज्ञ को पहले ही एडवांस में आइडिया मिल जाता है कि इस भूमि का सुधार कैसे करना।
1: कहने का तात्पर्य ये हुआ डॉक्टर साहब के लिए जो है मृदा परीक्षण जरूरी होता है, तो मृदा परीक्षण का तरीकाकार क्या होना चाहिए?
2: जी हाँ, देखिए जो सॉइल टेस्टिंग या मृदा परीक्षण की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है ये स्कीम जो है, और कुछ किसान भाई जो है मृदा परीक्षण रेगुलर कराते हैं, कुछ किसान भाई काफी टाइम के बाद कराते हैं और काफी हद तक पहले किसान भाई मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग को की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्योंकि हम सीजन फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कम पानी से अधिक उपज, कम खाद से अधिक उपज, और खासकर जब जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमें कम से कम या बिल्कुल रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें मिट्टी में पता होना चाहिए कि इसमें पोषक तत्व कितने हैं और कितनी देर तक हम इन पोषक तत्वों को उस जमीन में रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं। तो जहां तक सॉइल सैंपलिंग की बात है कि हमने नमूना लेना है, तो वो इस ढंग से सॉइल सैंपल आना चाहिए लैब में कि वो पूरे के पूरे खेत का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। मान लीजिए मेरे पास एक खेत है जो कि 1 हेक्टर का है, या कह लीजिए हम हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ बड़े छोटे छोटे खेत है,
1: 1 बीघा का है
2: 2 केनाल का है, तो पहले तो किसान भाई को ये पता होना चाहिए कि 2 केनाल के अंदर कितनी वेरिएशन है। अगर उसमें वेरिएशन नहीं है, उसमें भिन्नता नहीं है, तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि 8 या 10 जगह से आप उसमें सैंपल लीजिए 2 केनाल के लिए, या 1 केनाल में अगर आप 8 से 10 सैंपल लें तो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि हम खेत को 7 या 8 भागों में या 8 से 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और वहां से जो है हम आधा आधा किलो मिट्टी जो है 8-10 जगह से ले लेते हैं। और उसके बाद का लेने का तरीका, जी हाँ, इसके लिए हम आमतौर पर पहले ऊपर की जो 0 से 15 सेंटीमीटर जो लेयर होती है जिसे हम लो लेयर कहते हैं, उसी की सैंपलिंग लेते हैं। उसके लिए हम फौड़े से सैंपल ले सकते हैं, पहले वी शेप उसको काटकर फिर खुरपे से उसके बाद सैंपल लेते हैं, और जैसे स्लाइस होती है, जैसे हमारी ब्रेड की स्लाइस होती है, वैसे स्लाइस हम काटते हैं ऊपर से नीचे तक, ताकि पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आए,
1: अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह,
2: जी की तरह। और उसके बाद जितने हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, 8 या 10 जो हमने अलग अलग जो लोकेशन ली हैं, फिर सारी की सारी मिट्टी को लाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको अच्छी तरह मिलाते हैं। उसमें अगर कोई भी पत्थर है, कुछ और आया, घास आया, या कांच का टुकड़ा आया, या कहीं कोई ऐसा उसमें FIM खासकर जो आया, या कुछ और चीज आया, उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके 4 भाग हम जो है बनाते हैं। आमने सामने के 2 भाग हम मिला लेंगे, बाकी के 2 भाग जो है फेंक देते हैं। फिर से उसके जो 4 भाग बनाते हैं, फिर से उसको एक बनाते हैं, फिर उसके 4 भाग बनाते हैं, 2 को मिला देते हैं, 2 फेंक देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा सैंपल 300 ग्राम से 500 ग्राम नहीं रह जाता है।
1: जी,
2: तो आमतौर पर जो सॉइल टेस्टिंग लैब में लगभग 300 ग्राम के करीब तो सैंपल जाना चाहिए। तो मैंने वही कहा आपको कि रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि जो रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट फिर वेरिएशन इंडिकेट करेगी।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तो उसमें किस बातों का ब्यौरा होता है? कुछ बातों का तो आपने जिक्र किया, तो पूरा ब्यौरा दीजिए इसका, क्या क्या बातें लिखी होती है उसमें?
2: जी, पर जी, जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो होना चाहिए, या कुछ हमारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि सॉइल हेल्थ कार्ड की वो और उसमें प्रॉपर्टीज इंडिकेटर्स और उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो जो आमतौर पर जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारे प्रदेश में भी चल रहा है, तो इसमें हम सॉइल टेक्सचर, भूमि की बनावट निकालते हैं कि इसमें कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, उसका पता चलता है, तो वो उसमें एक इंडिकेटर
1: जी।
2: और जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर मान लीजिए 2 किस्म की मिट्टियां हैं, तो किस मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक ठहरेगा और किस में पानी एकदम से निकल जाएगा। दूसरा पैरामीटर इसमें सॉइल पीएच का है। उसके बाद जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, अवेलेबल नाइट्रोजन जो पौधे को एकदम से मिलता है, उसकी इंडिकेशन होती है। सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, लोहा है और तांबा है, इस सबका उसमें ब्यौरा होता है। और लगभग ये 12-13 जो है उसमें 13 के या 14 के करीब जो है पैरामीटर्स जो है वो इंडिकेट हो जाते हैं
1: जी।
2: लेकिन जैसे मैं बात कह रहा था कि कुछ हमारे जो सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों में चल रहे हैं, जैसे गुजरात की मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, वो प्रदेश जहां पर कि हम प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, प्रिसीजन इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या है कि जब हम पॉली हाउस कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, प्रिसीजन इरिगेशन का मतलब क्या है कि जब हम माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं, और उसके साथ फर्टिगेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर कि हमारा एम कम जमीन से ज्यादा उपज पैदा करना है, तो उसमें हम भौतिक जो है, हमारे जो भौतिक गुणवत्ता वाले जो इंडिकेटर्स हैं, उनको भी शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे उसमें कंपैक्शन की इंडिकेशन आती है कि जमीन कितनी सख्त है, उसके अलावा कितनी देर तक ये पानी जमीन अपने पास ग्रहण कर सकती है, और कितनी देर में इसमें बत्तर आएगी, और कितनी देर में जो है पौधा एकदम से सूख जाएगा। और या अगर आपने जैसे जैविक खेती की हम बात करें, तो आप उसमें खूब सारी देसी खाद या रिसोर्सेज डाल रहे हैं, उसमें आप गले सड़े पत्ते डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि भूमि की बनावट जो है अच्छी हो रही है। उसका इंडिकेटर होना चाहिए कि आप देखिए इसमें पानी ग्रहण क्षमता बढ़ गई है, या इसमें अवेलेबल एन की हम अगर हम बात करें, तो ये तो नाइट्रोजन पौधे को अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा इतनी नाइट्रोजन जो है जमीन में
1: उपलब्ध है
2: जी। और जिसको कि हम बिना रासायनिक खाद डाले उस पर हम दूसरी खेती कर सकते हैं। या आप जैसे हम मिश्रित खेती की बात कर रहे हैं कि आप मक्की के साथ सोयाबीन लगाइए या गेहूं के साथ चने लगाइए, तो उससे क्या होता है कि जो सोयाबीन है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, चना नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो हमने रासायनिक खादों से डालनी थी वो मक्की को सोयाबीन दे देगी। तो उसके लिए इंडिकेटर्स होने बहुत जरूरी है, और वो इंडिकेटर्स जो हैं वो सॉइल हेल्थ कार्ड में कुछ हद तक तो इंडिकेट हो जाते हैं। और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भौतिक इंडिकेटर्स हैं, फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, उनको उसमें शामिल करना
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी किसान भाई जो खेती बाड़ी है एक सही तरीके से करना चाहता है, कम लागत से अधिक फायदा मुनाफा कमाना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसके पास हो।
2: जी हाँ, क्योंकि इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब या सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाई को ये बताएगा कि उसको कैसी खेती करनी है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी है कि ठीक है गए वहां जाके दाना डाला, खाद डाली, और उसके बाद फिर सिर्फ काटने गए या गुड़ाई करने गए। और दूसरा ये है कि उसी जमीन से अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सबके, जैसे पॉली हाउस कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं या माइक्रो इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 100 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है या 1 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें पॉली हाउस में, तो 1 स्क्वायर मीटर में जो है टमाटर 8 से 10, 15, 18 किलो तक किसान भाई निकाल रहे हैं, और जो शिमला मिर्च है वो 12 से 15 किलो, और इसी तरीके से जो खीरा है वो भी 12 से 15 किलो किसान भाई निकाल रहे हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर से अगर 8 से 10 किलो भी सब्जी आपकी निकल जाए तो आप आप प्रॉफिट में,
1: तो जी इसमें कोई शक नहीं।
2: जी हाँ, तो जब आपने ऐसी खेती करनी है तो आपको समय समय पर अपनी भूमि की जो है वो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाना चाहिए और भूमि की जो है आप सॉयल टेस्टिंग कराइए, क्योंकि अगर इतनी सारी उपज हम जमीन से ले रहे हैं तो पक्की बात है कि जमीन में पोषक तत्वों की कमी तो होगी होगी। तो एक दो सीजन तो आप बढ़िया चला लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि भूमि में एकदम से जो है भूमि की जो गुणवत्ता है एकदम से कम हो जाती है। तो समय समय पर जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अगर आप टेस्टिंग कराते रहेंगे और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे बेस्ड अपॉन सॉयल हेल्थ कार्ड, तो कभी भी भूमि की गुणवत्ता में कमी नहीं।
1: जी, कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर साहब कि अगर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड जो है होना जरूरी है, तभी जो हम उसमें आकलन कर सकते हैं कि कितने तत्व हैं इसमें और किस तरह से इनको पूरा किया जा सकता है, किस चीज की कमी है तो उस तरीके से पूरा किया जा सकता है, या ज्यादा है तो उसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान साथियों, तुसा सुनिया ना कि किस तरह दे साढ़े विशेषज्ञ जड़े ने सर तुसें दस्सा दे कि तुसां जड़ा स्वास्थ्य कार्ड बनाना है तो इस विच तुसां क्या क्या जड़े इहदा लाभ हन सै उठाई सकते हैं, कहना लाभ उठाने ते सोगी सोगी तुसां अपनी जड़ी खेतीबाड़ी है से ढंगे ने करे सकदे ने, है ना। कने दिखना है तुसां कि मृदा यो टेस्ट कराना है कि तिसा च कुछ चीज़ा की कमी है, कने अगर तिसा चीज़ कोई तिसा मिट्टी च कोई कमी है तो तुसां असें स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम ने जेड़ा परीक्षण कराना है, कने परीक्षण करी की तुसें तिना जेड़े विशेषज्ञ होने तिना दस देना कि इस मिट्टी च कमी है, तुसें ये पोषक तत्व जेड़े ने पाना पौने ने। तो उम्मीद है कि इस जानकारी कन्नै तुसें बड़ा ही फायदा उठाना है अपनी मृदा जेड़ी है तुहाड़ी मिट्टी जेड़ी है इस विच उर्वरक या फिर जेड़े पोषक तत्व ने तिना पाएगी। कने हुण किसान साथी अहां पहले तो सुनने ने विज्ञापन गए, इसके बाद तुसा सुनाना है प्यारा दिया लोक गीत।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई,
7: लड़ी हक की लड़ाई हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई
7: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किसान भाई बहनों तुसा सुने प्यारे दिया लोक गीत कन्नै लोक गीतें कन्नै ही है। तुसें हून थोड़ी दी जानकारी देनी है मौसम दी। तो मौसम विच अज जेड़े न पूरा दिन थोड़े थोड़े बदल भी छाए रहे, कन्नै बरखा तो होई नहीं लेकिन ठंड जेड़ी है संजा पिया गया से होई गई है। तो आप अपना जेड़ा ऐसा ध्यान रखना है, कन्नै अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, कन्नै सोगी सोगी अपनी खेती बाड़ी का भी ध्यान रखना है। कन्नै इसी कन्नै अज दे कार्यक्रम का हाँ जेड़ा समय है सै पूरा होआ दा, कन्नै अहां अज दी अपनी गलबात जेड़ी है सै इत्थों ही खत्म करनी है। तो अगली बारी फिर तुहाने मुलाकात होनी है। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्रैंडियां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण, 97 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82%.

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी शिमला के किसान वाणी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा
8: और मैं हरि सिंह चंदेल।
7: किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियाँ देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सायं 7:10 से लेकर 7:45 तक प्रसारित किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा।
8: तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए किसान वाणी।
7: हरी जी, क्या हाल चाल है आपके?
8: हेमलता जी, मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे।
7: हरी जी, हमारा किसान तो व्यस्त रहता ही है, आप जानते ही है, आजकल घास की कटाई का काम चला है, इधर फसलें भी तैयार खेतों में पड़ी है, तो धूप भी लग रही है, दिन में खरी धूप लग रही है। वही अपना ध्यान रखे, पानी को साथ रखे और समय पे भोजन भी ग्रहण करे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है किसान भाइयों, इसका विशेष ध्यान रखे। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, काम की बातों में बात करेंगे। रवि की चारे वाली फसल बरसीम और रिजका की बुआई, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा और उनसे बातचीत कर रहे हैं शिव रंजन
8: जी। तो सबसे पहले बात करते हैं रवि की चारे वाली फसल बरसीम और रिजका की बुआई के बारे में। बात करें बरसीम की, तो बरसीम एक वार्षिक फलीदार चारे वाली फसल है। यह 1700 मीटर के निचले सिंचित इलाकों के लिए एक अत्यधिक उपयोगी चारे वाली फसल है। यह बढ़ोतरी की हर अवस्था में रसदार और नरम रहती है। इसे जल निकासी वाली भूमियों में, असिंचित इलाकों में जहां भूमि में पानी की सतह ऊपर है में भी उगाया जा सकता है। अनुमोदित किस्में आप ले सकते हैं मैस्कावी BL1 और BL22। बात करें मैस्कावी की, तो यह जल्दी बढ़ने वाली किस्म है और पौधे की 75 सेंटीमीटर लंबाई फूल आने पर पहुंच जाती है। यह लगभग 500 से 600 क्विंटल हरा चारा और 100 से 125 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर 5 कटाइयों में दे देती है। इसमें 20% प्रोटीन फूल आने की प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है। बात करें BL1 की, तो यह मैस्कावी किस्म की अपेक्षा अधिक देर तक बढ़ने वाली किस्म है, इसलिए इससे जून के अंत तक अतिरिक्त कटाई ली जा सकती है। यह 600 क्विंटल हरा चारा और 130 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर के लगभग दे देती है। बात करें BL22 की, तो यह भी अधिक देर तक बढ़ने वाली किस्म है, जिससे जून में एक अतिरिक्त कटाई ली जाती है। यह 750 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर के लगभग दे देती है।
7: जी, किसान भी यदि भूमि की तैयारी की बात की जाए, तो ये हल्की सी भारी किस्म की भूमि में अच्छी तरह से पैदा हो जाती है और लवण के लिए ये सहनशील भी है। अच्छी तरह से तैयार किए हुए व खरपतवार रहित समतल खेत इसकी खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। यदि बिजाई की बात करें, तो मध्य सितंबर से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसकी बिजाई का उत्तम समय चल रहा है। और किसान भाइयों, आजकल तो देखो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और आजकल इसकी बिजाई का बहुत ही उचित समय चल रहा है। यदि समय पर बिजाई करेंगे तो आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। यदि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बिजाई के लिए देरी हो जाए, तो पहली कटाई लगभग 3 महीनों के बाद मिलती है। बीज की मात्रा एवं बिजाई के ढंग की बात की जाए, तो खेत में खड़े पानी में 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ध्यान रखें कि बीज में अन्य खरपतवारों विशेषकर कासनी के बीज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बचाव के लिए बरसीम के बीज को 1% नमक के घोल में डालना चाहिए और तैरते हुए बीजों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। यदि मैस्कावी किस्म वो टेट्राप्लाइड

0: जाए।
1: जी
0: फिर इन बीजों के ऊपर टीके की पतली तह बिछा दें और अच्छी तरह मिला लें। इन बीजों को छाया में सुखाकर बिजाई कर लें।
1: जी किसान भाइयों, बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक की। बिजाई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर भूमि पर डालें, और इसके अतिरिक्त गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर डालें। यदि हम सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बिजाई के एक सप्ताह बाद देनी चाहिए, और इसके बाद अन्य सिंचाइयां मौसम की स्थिति को देखकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर अवश्य करें।
0: जी अब बात करें कटाई की, तो पहली कटाई बिजाई के लगभग 60 दिनों के बाद की जाती है और उसके बाद 25 से 30 दिनों के अंतर पर कटाई जो है कर लेनी चाहिए। मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसे सर्दी के मौसम में 50 से 60 दिनों के अंतर पर काटा जाता है और इस प्रकार 5 से 6 कटाइयां मिल जाती है।
1: जी किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं रिज्का की। ये एक 12 मासी फलीदार चारे की फसल होती है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वनस्पति की सारे वर्ष अच्छी बढ़ोतरी होती है और ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है और जो लगातार खेती के कारण कमजोर हो गई है।
0: बात करें अनुमोदित किस्म की, तो इसमें आप ले सकते हैं आनंद 3। इसके गहरे हरे रंग के 3 पत्ती वाले पत्ते होते हैं जिनका तना मध्यम मोटा, जड़ें गहरी और प्रत्येक पौधे में 10 से 15 दौजिया निकलती है। इसके फूल नीले रंग के और जल्दी जल्दी आने की क्षमता रखते हैं। इसमें शुष्क पदार्थ के आधार पर 23 से 24% प्रोटीन होती है और अधिक पौष्टिक भी होती है। इससे लगभग 400 से 500 क्विंटल हरा चारा 5 से 6 कटाई में प्राप्त हो जाता है।
1: जी किसान भाई, यदि भूमि की बात की जाए तो गहरी तथा अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी होती है। ये फसल अम्लीय भूमि में पैदा नहीं हो सकती। जिस भूमि की पीएच 6.5 से नीचे हो उसमें चूना मिलाना चाहिए। चूने के लिए मिट्टी की अम्लीयपन के लिए परीक्षण करना चाहिए और बिजाई से महीना पहले चूना मिट्टी से मिला देना चाहिए। यदि बिजाई के समय की बात की जाए तो अक्टूबर के पहले पखवाड़े से नवम्बर के अंत तक इसकी बिजाई के लिए उत्तम समय माना गया है।
0: जी अब बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी रहेगी और बिजाई आपने कैसे करनी है। तो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होगा। पंक्तियों में 40 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसका बाहर का छिलका मोटा होता है, इसलिए बीज को बिजाई से पहले रात भर के लिए भिगो कर रखें। बरसीम की तरह इसमें भी टीका करना चाहिए यदि किसी खेत में पहली बार इस फसल को लगाया जा रहा है।
1: जी
0: बात करें खाद और उर्वरक की, तो बिजाई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। यदि भूमि अम्लीय हो तो बिजाई से 1 महीना पहले मिट्टी परीक्षण के आधार पर चूना मिला देना चाहिए।
1: जी किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई के लगभग 1 महीने के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए और इसके बाद मौसम के अनुसार 15 से 30 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए और बरसात के मौसम में पानी को खेत में खड़ा ना रहने दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि हम कटाई की बात करें तो नई उगाई गई फसल लगभग 2 से 4 महीनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जो क्षेत्र के आधार पर निर्भर करती है। उसके बाद 30 से 40 दिनों के अंतर पर कटाई ली जा सकती है। यदि बीज तैयार करने की बात करें तो यदि फसल को चारे के लिए ना काटा गया हो तो बीज की अच्छी उपज मिलती है। यदि फसल से बीज प्राप्त करना हो तो जनवरी के बाद कटाई नहीं करनी चाहिए। लगभग 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी रवि की चारे वाली फसल बरसीम और रिजका की बुआई के बारे में जानकारी। तो आप सुन लेते हैं मैना देवी की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना मैना देवी की आवाज में ये लोकगीत। तो हेमलता, जब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा और उनसे बातचीत करेंगे शिव रंजन।
1: किसान और बागवान भाई बहनों नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम के माध्यम से ये हमारा प्रयास रहता है कि समय समय पर आपको नए नए विषयों के ऊपर जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। और आज जिस विषय को लेकर के हम आपको जानकारी देंगे वो है मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर ये मौन पालन होता क्या है, इस विषय में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी दें।
2: जैसा आपने कहा मौन पालन, तो मौन पालन हमारे लिए कोई नई व्यवसाय नहीं है। इस व्यवसाय को प्राचीन काल से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो आधुनिक मधुमक्खी पालन की बात करते हैं
1: जी,
2: वो लगभग हमारा जो है 1950 के आसपास आरंभ हुआ। और शुरुआत में जो मधुमक्खी पालन था वो हमारी एक देसी प्रजाति है जिसे हम इंडियन हनी भी कहते हैं, एपिस सिराना, उसके साथ हमारे बागवान भी और सरकारी जो विभाग थे उसके साथ मधुमक्खी पालन करते रहे।
1: अच्छा जी।
2: लेकिन जो बाहर के देशों में एक और प्रजाति पाई जाती है जिसे हम यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी के नाम से जानते हैं
1: जी,
2: और उसको साइंटिफिकली हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं, तो उसको भी हमने सफलतापूर्वक 1962 में, जो हमारा नगरोटा बगवा है कांगड़ा में, वहां सबसे पहले सफलतापूर्वक लाए और पाला। तत्पश्चात काफी वृद्धि हुई एपिस मेलिफेरा के साथ मधुमक्खी पालन में। इसका मुख्य कारण था कि यह मधुमक्खी अधिक शहद देती है और साथ ही साथ इसका जो टेम्परामेंट हम कहते हैं, ये थोड़ी शांति प्रिय मधुमक्खी है, तो इसलिए लोगों ने इसको अपनाया भी। और आज अगर हम कहें कि मधुमक्खी पालन का क्या स्टेटस है, तो लगभग भारतवर्ष में 25 लाख जो है वो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी है।
1: अच्छा जी।
2: और इसके अलावा लगभग 2.5 लाख केवल मौन पालक ही है जो इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं।
1: अच्छा जी।
2: या तो मधुमक्खी पालन वो एपिस मेलिफेरा से शहद निकाल रहे हैं, या वो जो जंगली मधुमक्खी है वहां से हम कहते हैं हनी हंटिंग।
1: अच्छा जी।
2: तो वो उस प्रकार जो है लगभग 80,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है और जिसकी जो कीमत है लगभग 770 करोड़ है। तो आप आंक सकते हैं कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही हनी प्रोडक्शन में कितनी अधिक।
1: बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि मौन पालन आखिर होता क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौन पालन के द्वारा हम किस तरह के उत्पाद प्राप्त कर

0: सकते हैं।
1: आज से अगर 10 साल पहले की बात कहें
0: जी
1: तो अगर हम किसी को कहते थे कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं,
0: हाँ जी
1: तो एक ही उत्तर मिलता था कि शहद के लिए। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। सबसे पहले तो हमारे जो अन्य उत्पाद हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं, वो हैं एक मधुमक्खियां पराग एकत्रित करती हैं अपने भोजन के रूप में,
0: जी
1: उसको एक उत्तम प्रोटीन युक्त का खाद्य पदार्थ माना गया है। और मधुमक्खियां जो उनके अपने शरीर से मोम निकालती हैं और अपना छत्ता बनाती हैं, उस मोम को भी कई प्रकार की दैनिक जो हमारी वस्तुएं हैं उसमें प्रयोग में लाया जाता है, जैसे लिपस्टिक है, कोई हमारा क्रीम बनना है, कई तरह इसका इस्तेमाल होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉयल जेली,
0: अच्छा जी
1: तो रॉयल जेली मधुमक्खियां तो अपनी रानी के शिशु को पालने के लिए इसका उपयोग करती हैं,
0: जी
1: लेकिन ये इतनी उत्तम औषधि है और फूड सप्लीमेंट है कि यदि इसको हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। और जैसा हम कहते हैं कि मधुमक्खियों का सभी लोगों को डर रहता है कि मधुमक्खियों से तो विष होता है, उस
0: हाँ जी
1: एक कांटा जैसा कहते हैं जिसे हम स्टिंग कहते हैं, तो उससे लोग डरते हैं। तो एक तो मैं ये बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मधुमक्खियों को हम बिना उनको नुकसान पहुंचाए
0: जी
1: इस मौन विष को निकाल सकते हैं, और इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के जोड़ों की दर्द के लिए किया जा रहा है।
0: अच्छा जी
1: और इसका जो इस तरह का कार्य है उसमें चाइना में बहुत अधिक शोध हुआ है और इसके ऊपर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है।
0: अच्छा जी
1: एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा लोगों को कि कई बार जो मौन विष है, कांटा जो होता है, मधुमक्खियां लोगों को काट देती हैं।
0: अच्छा जी
1: तो जब भी यदि किसी हमारे किसान भाई को, बहनों को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई मधुमक्खियां ज्यादा नंबर में काट रही हैं,
0: हाँ जी
1: तो वो क्या करते हैं कि उसको ऊपर से पकड़ के उस कांटे को निकालते हैं।
0: जी जी
1: इससे जितना भी जहर की पोटली होती है, सारे का
0: वो
1: सारा जहर हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये आपके लिए विशेष ध्यान रखें कि नीचे से निकालें उसको,
0: अच्छा जी
1: जहां से कांटा है कांटे से निकाल लें, उसके ऊपर जो पोटली है पोटली से कभी ना पकड़ें,
0: जी
1: या किसी छोटे चिमटू के उसकी सहायता से निकालें, ताकि शरीर में एक ही बार में अत्यधिक मौन विष जो है नहीं पहुंचे, जो घातक सिद्ध होता है अक्सर। तो ये तो रही बात ध्यान रखना है। और इसके अलावा मधुमक्खियां जो एपिस मेलिफेरा है,
0: हाँ जी हाँ
1: वो
0: जी
1: प्रोपोलिस एक गोंद होता है जो अपने लिए एकत्रित करती हैं, जो शिशु कोष्ठ होता है, सेल होता है, वहां पे उसकी पॉलिशिंग करती है
0: अच्छा
1: ताकि
0: जी
1: उसको कोई बीमारी ना लगे। तो इस प्रोपोलिस को भी इवन एंटी कार्सिनोजेनिक कैंसर के लिए भी, इसको उपचार के लिए इसका शोध चल रहा है।
0: अच्छा
1: तो
0: जी
1: कहने का मतलब है कि मधुमक्खियां जो भी हमें दे रही हैं, अपने लिए जो पदार्थ बना रही हैं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज अगर हम मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो,
0: हाँ जी
1: चाहे हमारी मुख्यमंत्री योजना हो, जिसके तहत बहुत ही इसमें मैं कह सकता हूं कि लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, उनको विभिन्न प्रकार की सहायता दी जा रही है, तो वो हमारा जो उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य एक तो है कि लोगों को रोजगार देना,
0: अच्छा जी
1: लेकिन रोजगार देने के साथ साथ जो मधुमक्खियों की एक बहुत ही अमूल्य उत्तम सेवा है, वो है पर परागण की।
0: अच्छा जी
1: क्योंकि हमारे जो लगभग जितने भी हमारे खाद्यान्न की मुख्य फसलें हैं, लगभग उसमें से 65% हैं वो मधुमक्खियों द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि मधुमक्खियां जो हैं सिर्फ मधुमक्खी पालक या किसान के लिए ही उपयोगी नहीं है,
0: जी
1: बल्कि हर मनुष्य के लिए, हर बच्चे के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
0: यहां तक कि फसल के लिए भी काफी उपयोगी है, अगर हम सेब की बात करते हैं
1: जी
0: तो।
1: जी तो सेब तो हमारा एक ऐसा कार्य रहा है यहाँ पे हमारे विभाग का और जो फूड ग्रो एसोसिएशन और फार्मर्स का, कि एशिया में सिर्फ हम ही अग्रणी हैं
0: हाँ जी हाँ जी
1: मधुमक्खियों को पॉलिनेशन के लिए यूज में लाने के लिए।
0: जी
1: लेकिन इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जितने भी छोटी छोटी, जो चाहे वो एक घास जैसा फूल हो, चाहे वो बड़े से बड़े तुन या सफेदी जैसा फूल हो, उन सब में बीज कैसे बनता है? अधिकतर इस तरह के पेड़ पौधे हैं जिनमें बीज केवल मधुमक्खियों के भ्रमण के बाद ही बनता है। तो अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो फूड है, वो सबसे पहले प्रभावित होने वाला है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हम कौन कौन से उत्पाद इससे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौन पालन को अगर किसी किसान या बागवान ने व्यवसाय के तौर पर करना है तो उसे कैसे प्रारंभ करें?
1: जी, ये एक बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय हम इसको दो तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो आ गया कमर्शियल स्केल,
0: जी
1: जहाँ पे मधुमक्खी पालक अपनी पूर्ण जो अपना खर्चा है वो सिर्फ मधुमक्खी पालन से ही निकालेगा। तो इस तरह का जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उनको लगभग 500 जो मौन वंश है वो रखने पड़ते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन शुरुआत वो भी

0: पांच या दस स्मॉल वंशों से ही करेंगे। दूसरा ग्रुप हम लेते हैं व्यवसाय के रूप में, अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में।
1: अच्छा जी,
0: कि जैसे कुछ लोग हमारे गांव में हैं, वो चाहते हैं कि एक दो व्यवसाय वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ खर्चा वो चाहते हैं कि हम मधुमक्खी पालन से भी निकालें, तो वो लोग छोटे स्तर पर 50 से 60 मौन वंश रख सकते हैं। और यदि जैसे आपने कहा कि वो सेब के इलाकों में है,
1: हाँ जी,
0: तो वहां पे बागवान उसको किराए पे भी लेता है पॉलिनेशन के लिए।
1: अच्छा जी,
0: तो हर मौन वंश से उनको लगभग 700 से 800 रुपए परागण के लिए मिल जाएगा, तो अतिरिक्त आय उनकी उससे आ सकती है। और तीसरा हम कहते हैं कि अगर आप इसको शौकिया तौर पर भी करते हैं, तब भी ये परागण के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि जहां जिसने शौकिया तौर पर भी 2 से 5 मौन वंश रखे हुए हैं, तो वो 5 मौन वंश 2 से 3 किलोमीटर में एक साल में करोड़ों फूलों को पॉलिनेशन करके बीज बना रहे हैं, फल बना रहे हैं। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए, और इसीलिए हमें छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। अब रही बात के जो छोटे स्तर का है या मध्यम स्तर का जो हमारा मौन पालन है, वो हम स्टेशनरी बी कीपिंग कहते हैं। एक स्थान पर वो मधुमक्खी पालन हमें करना है, तो जब एक स्थान पर करना है तो उसके लिए हमें कौन सी प्रजाति के साथ करना है, तो इसलिए मैं सभी अपने बागवान भाइयों को या किसान भाइयों को या नवयुवक जो भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, ये कहना चाहूंगा कि उस स्थिति में हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे देसी प्रजाति के साथ इस व्यवसाय को अपनाएं।
1: अच्छा जी,
0: और यदि कमर्शियल स्केल पे अपनाना है तो दोनों में से कोई भी प्रजाति इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज के संदर्भ में जो एपिस मेलिफेरा है वो माइग्रेशन के लिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जब हम 100 से अधिक मधुमक्खियां रखेंगे, हमारे पास मौन वंश होंगे, तो हमें एक रूट बने हैं माइग्रेटरी रूट, स्थानांतरित कहाँ कहाँ हमने मधुमक्खियों को किस समय कहाँ ले जाना है, ताकि वहां पे हमें भारी मात्रा में फूल मिले जिनसे शहद और पराग मिलता है, और हमारा जो मधुमक्खियों से शहद उत्पादन है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम एक मौन वंश से हमें प्राप्त होना चाहिए।
1: अच्छा जी,
0: तो ये तो एक बात रही किस स्तर पर कौन मधुमक्खी पालन को कर सकता है
1: जी।
0: दूसरी बात आती है कि इसके लिए हमने किस तरह से आगे जाना है। अगर एक बार हमने ठान लिया या हमने सोच लिया कि हमने मधुमक्खी पालन करना है, तो उसके लिए एक तो हमें मधुमक्खी को भी चुनना पड़ेगा कि कौन सी प्रजाति है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और मेरा तो ये कहना है कि प्रजाति को चुनने के लिए किसी आपको जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या वैज्ञानिक हैं, उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। और साथ में मधुमक्खी पालन को जो भी व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है उसे प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है। तो जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, KVIC कहते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन और अन्य नेशनल बी बोर्ड, इस तरह के कई जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, जो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं।
1: अच्छा जी।
0: तो वो लगभग कम से कम 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण जब कोई व्यक्ति लेता है तो वो इतना काबिल हो जाता है कि मधुमक्खी जो होती है उनका प्रबंधन सीख सकता है।
1: अच्छा जी।
0: और इसके साथ ही साथ फिर हमें एक अच्छे उपकरण भी लेना आवश्यक, तो उन उपकरणों के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट भी हेल्प करता है, और उसके लिए कई तरह के स्रोत हैं जिनको आपको जानकारी प्रशिक्षण के समय मिल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, मौन पालन के व्यवसाय में किस तरह से जो है आय प्राप्त कर सकते हैं?
0: तो जैसे मैंने कहा अभी कि एक तो मधुमक्खी पालन में जब हम इसको अपना रहे हैं मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में,
1: हाँ जी,
0: तो सबसे पहले तो हमें शहद से आय मिलती है।
1: अच्छा जी,
0: डायरेक्ट। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ हैं, कुछ को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और कुछ के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण लेने पड़ते हैं, जैसे रॉयल जेली या हम मौन विष की बात करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत जो है उससे भी हमें लाभ मिलता है। साथ ही साथ जब मौन पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि आज अगर 10 हमारे पास मधुमक्खियां हैं,
1: हाँ जी,
0: और बाहर मौनचर जो मौन पुष्प में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है,
1: जी जी,
0: तो हम इसका विभाजन भी कर सकते हैं।
1: अच्छा जी,
0: उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं उनको नई मौन वंश बेच करके। रानी पालन एक व्यवसाय है इसका।
1: अच्छा जी,
0: कि केवल रानी पालन या पार्टली रानी पालन को करके रानी पाली और उनको बेचा जा सकता है। इसके लिए भी अब बी ब्रीडर्स की एक स्कीम जो है, जो हमारे प्रोग्रेसिव बी कीपर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, वो भी अब हमारे विभाग में है, जिसमें इनको अनुदान भी मिलता है और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है।
1: अच्छा जी।
0: और साथ ही साथ जो फसलों के परागण के लिए कुछ हमारे मौन पालक हैं, वो बागवानों को मधुमक्खियों को किराए पर देकर के भी उससे पैसा कमा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो मुख्य तौर पे अगर हम करते हैं स्टेशनरी एक स्थान पर बी कीपिंग, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 100 मौन वंशों से 65-70 हजार रुपए मिल जाता है। और अगर हम स्थानांतरित कर रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख तक जो है वो आमदनी 100 कॉलोनी से एक मौन पालक को मिलनी चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी कि मधुमक्खी जो एक अलग व्यवसाय है, तो इसकी क्या क्या

0: विशेषता होती है।
1: देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस व्यवसाय को भूमिहीन किसान भी कर सकता है।
0: अच्छा जी,
1: देखो, आपको जो भी व्यवसाय करना है, सबसे पहले तो ये आदमी में आता है कि मैं कहाँ से जमीन लाऊं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: एक किसान को, एक बेरोजगार को।
0: बिल्कुल जी,
1: लेकिन इसमें भूमिहीन भी जो है वो भी इस व्यवसाय को एकदम अपना सकते, और ये जो व्यवसाय है ये कम समय में आरंभ हो जाता है। इसकी कम लागत है बाकी व्यवसायों के अपेक्षा, क्योंकि आज अगर हम शहद मोनवंश लेते हैं, तो अगर हमारा शहद निकलने का जो सीजन होता है, हम कहते
0: जी
1: हैं, वो चल रहा हो, तो एक महीने के अंदर भी शहद उत्पादन हो जाएगा।
0: अच्छा जी,
1: मोनवंशों को विभाजन करके बेचा जा सकता है, लेकिन उसको सीखना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। फिर मौन पालक की पालन जो है किसान के लिए एक ऐसा व्यवसाय है कि आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है इसकी। ये फार्मिंग को भी सपोर्ट करता है, इसको स्थान नहीं चाहिए ज्यादा, इसको कम से कम समय चाहिए, मतलब
0: जी
1: मौनवंशों को
0: जी
1: देखने के लिए हफ्ते में एक बार जाना है सिर्फ इसको देखने के लिए। तो इस तरह से इसको कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा जो है इसको आरंभ किया जा सकता है, और वो इसमें विभिन्न प्रकार के जो हैं अपने ग्रुप्स बना करके या अपने छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन को अपना सकते।
0: बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं जानना चाहूंगा कि जो मौन पालक आजकल इस व्यवसाय को छोटे और बड़े रूप में कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मौन पालक भाई लोग वो जानते हैं कि हमारे यहाँ पे शहद की गुणवत्ता और जो उसका उत्पादन है वो कम है।
0: अच्छा जी,
1: तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा मौन पालकों को कि वो एक तो जो उपकरण है वो स्टैंडर्ड उपकरण हमेशा इस्तेमाल में रहे,
0: जी
1: और जहां तक प्रबंधन की बात है तो जो रानी है वो अच्छे मौन वंश से रानी को पैदा करके, या रानी को कहीं से खरीद भी सकते हैं, अच्छी रानी को हर वर्ष अपने मौन वंश में चेंज कर,
0: अच्छा जी,
1: नई रानी देना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमारे पास नई रानी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में अंडे नहीं होंगे, हमारे पास वर्कर्स नहीं होती, जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई भी कार्य करना तो उसके लिए फोर्स चाहिए,
0: जी,
1: पॉपुलेशन चाहिए, संख्या चाहिए,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो संख्या सिर्फ हमें रानी से ही मिल सकती है। एक तो रही ये बात, और साथ ही साथ हमें प्रबंधन इस तरह से करना है मौनवंशों का कि जब हमारा शहद निकालने का या परागण का समय होता है, उस समय से लगभग हमारा 30 दिन पहले हमारे मौनवंश, उनमें पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खियों की संख्या होनी चाहिए, ताकि वो कार्य करके अधिक से अधिक शहद और अधिक से अधिक परागण कर सकें, और फलस्वरूप बी कीपर्स के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, हम तो कहते हैं कि विन विन सिचुएशन है, कि दोनों के लिए ही इसमें लाभ और केवल लाभ ही है।
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुना। विषय था मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे शिव रंजन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारीपूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे।
3: तो हेमलता जी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा घरेलू स्तर पर सेब का परिरक्षण, और साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यारे से लोकगीतों के साथ, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा फूलों की खेती एक लाभकारी व्यवसाय। तो हेमलता जी, अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
2: नमस्कार, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
4: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: किसान वाणी, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव 387.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 होने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कर रही है काम। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, प्रदेश सरकार उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को दे रही है प्रशिक्षण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया संविधान की भावना के विपरीत कानून बनाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित मनाली दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। और दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हिमाचल से विदा, 11% कम हुई इस बार मॉनसून की वर्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार में अब तक 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीनों में 4,000 शिक्षक और भर्ती होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिए OPS जारी रहेगी और सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जल्द नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का वास्तविक अर्थ गरीब की आवाज सुनना, उसके दर्द को समझना और उसके अनुरूप योजनाओं को लागू करना है।
3: जहाँ जनता की आवाज को सुना जाए, जहाँ गरीब व्यक्ति की पीड़ा को सुना जाए और दिमाग में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहला व्यवस्था परिवर्तन, जो दूध था आपका 32 रुपए लीटर बिका करता था और दूध के मूल्य में महज कभी 1 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, कभी 50 पैसे की बढ़ोतरी होती थी। और जब मैंने पहली बार दूध में 9 रुपए बढ़ाया, सभी अधिकारियों से मुझे विरोध झेलना पड़ा। मैंने कहा कि इसका पैसा मैं अपने सुधारों से लाऊंगा।
2: मुख्यमंत्री ने बाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर बुशहर में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और एक छात्रा की मांग पर रचोली स्कूल भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर एक एंटी चिट्टा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
4: 16 सितारा की उम्र से जब सिक्टी के सप्लायर जो होते हैं, किसी न किसी तरह बच्चों को लत लगाने की कोशिश करते हैं और उनके द्वारा फिर वो कुरियर का काम भी करवाते हैं, तो उस पीढ़ी को जागरूक करने का काम सरकार का है। जो चिट्टे में पड़े हुए व्यक्ति हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का काम भी सरकार का है, के लिए हम कोटलाबेड़ में एक बहुत अच्छा चिट्टा मुक्त केंद्र बना रहे हैं।
2: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में उद्योगों की जरूरतों और उपलब्ध मानव संसाधन के कौशल के बीच मौजूद स्किल गैप एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए प्रदेश सरकार युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दे रही है। धर्माणी आज घुमारवीं में सीर उत्सव के मौके पर आयोजित रोजगार मेले के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के उद्देश्य से मील ऐप भी लॉन्च किया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू असंवैधानिक नीतियों, कानूनों और फैसलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की बार बार अदालत में फजीहत हो रही है। उन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल अफसरों की भर्ती में जॉब ट्रेनी बनाए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार देने का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में कई हास्यास्पद और संविधान की मूल भावना के विपरीत कानून बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में मुद्रा योजना की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि इसके तहत युवाओं और महिलाओं को 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बिना गारंटी वाले लोन दिए गए हैं।
5: रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली, बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले जिनके लिए कभी बैंक दरवाजे बनते बेचारा दूर से देख करके उसे जाना पड़ता था। आज मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है, हमने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
6: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
7: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
6: जी डॉक्टर साहब,
7: सिर्फ इसे नहीं सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
8: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
10: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
9: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
10: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
9: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
10: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
9: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
10: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित मनाली प्रवास को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने आज एक बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पूरे प्रदेश से वापस चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मॉनसून के प्रदेश से पूरी तरह वापस हो जाने की आज पुष्टि की। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून के दौरान 734.4 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा की तुलना में केवल 652.3 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। इस तरह प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून की वर्षा सामान्य से 11% कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में मॉनसून की सामान्य वर्षा हुई, जबकि हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष प्रदेश में मॉनसून का आगमन एक सप्ताह देरी से 30 जून को हुआ था और मॉनसून की वापसी भी इसी सप्ताह की देरी से हुई है। प्रदेश व वन विभाग, साइकिलिंग ऑफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और शिमला साइकिलिंग एसोसिएशन ने वन्य जीव सप्ताह के तहत आज शिमला में एक साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली शिमला के रिज मैदान से कैचमेंट एरिया ढली तक आयोजित की गई। रैली के माध्यम से युवाओं को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने, साइकिलिंग, फिटनेस और जिम्मेदार पर्यटन का संदेश दिया गया। इस मौके पर साइकिलिंग ऑफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के मानद सचिव मोहित सूद ने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस, सतत परिवहन और जिम्मेदार पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
11: वन मंडल सोलन की तरफ से सोलन के बसाल क्षेत्र में 75वें वाइल्ड लाइफ वीक का सफल आयोजन किया गया और इसमें लगभग 80 से 90 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये जो आजकल वाइल्ड लाइफ क्राइम बढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट ऑवर कम होता जा रहा है, ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक में इसकी जागरूकता पैदा करना था। ये सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेस्ट की तो है ही है। इसमें पब्लिक को अपनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे।
2: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहा शुष्क मौसम का दौर जल्द ही खत्म होगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 5 अक्टूबर से प्रदेश में वर्षा और बर्फबारी फिर से लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कर रही है काम। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, प्रदेश सरकार उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को दे रही है प्रशिक्षण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया संविधान की भावना के विपरीत कानून बनाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित मनाली दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। और दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हिमाचल से विदा, 11% कम हुई इस बार मॉनसून की वर्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
12: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
13: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
12: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
13: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
12: जानकारी लें, अधिकार जाने।
13: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
12: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
14: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए अब प्रस्तुत है रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में एमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं, आवेदक ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10.2 की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो, आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से बीएससी एमएलटी या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिग्री प्राप्त की हो। इन योग्यताओं के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना आवश्यक है। वांछनीय योग्यताओं में आवेदक को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, रहन सहन और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता होना जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2026 और जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2026। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि विभाग में MLT यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के जो 18 पद भरे जाने हैं वे सभी पद बैच वाइज भरे जाएंगे और ये पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे। सामान्य श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 9, सामान्य EWS का एक पद, सामान्य WFF का एक पद, अनुसूचित जाति के 5 पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे जाने हैं। अंतिम तिथि सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 15 अक्टूबर है और जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। ये थे रोजगार समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
15: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का।

0: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और अब समय है देशभक्ति गीतों का।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।

0: कहीं होता है भैया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोज और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक

0: गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
4: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
5: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
4: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
6: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
4: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
8: लहरा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। प्रदेश में मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार से कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित एरियर के जल्द भुगतान का किया आग्रह। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों हिमाचल के दौरे पर है। केंद्रीय टीम ने दौरे के दौरान कुल्लू जिला के मनाली, बंजार और आनी क्षेत्रों के विभिन्न आपदा प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडू के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, भूस्खलन प्रभावित गांवों और अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन किया। एम चंद्रुडू ने बताया कि केंद्रीय दल ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया ताकि नुकसान का वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हुए नुकसान की समग्र रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम उसका आकलन करेगी और फिर राहत सहायता के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगी।
1: भारत सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया।

0: 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए चंबा व कांगड़ा जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। उन्होंने बताया कि मौसम की मार से इस बार हिमाचल में सेब की फसल में भारी गिरावट आई है और अभी तक करीब 1,14,00,000 सेब की पेटियां बाजार में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल करीब 3 से 3.5 करोड़ सेब पेटियों की बम्पर फसल हुई थी, जो कई वर्षों में सबसे अधिक थी।
1: अभी जो मानसून की आखिरी जो बारिशें हैं, इस बार कोई 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस बरसात के अंदर हुआ है। और ये प्रक्रिया है, केंद्र की टीमें जब इस किस्म के नुकसानों का हम मूल्यांकन करके भेजते हैं तो वो भी आके इसका अपने लेवल पे चेकिंग करते हैं। पिछले कल वो धर्मशाला और आज मनाली के उधर इलाके में गए हैं। जो 23 का जो मूल्यांकन था हमारा, जो 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान था, उसके एवज में कुल 2,500 करोड़ देने का केंद्र ने जो है बात मानी। 2,500 करोड़ में भी 500 करोड़ तो हमें देना है, तो 23 का पैसा आना शुरू हुआ है। सेब में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, अभी तक 1,14,00,000 पेटियां ही मार्केट में आई है, जब पिछले बार इन्हीं दिनों में कोई 1,76,00,000 पेटियां मार्केट में थी। और जो हम मंडी मध्यस्थता के तहत जो सेब लेते हैं उसमें भी भारी गिरावट है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 233 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। रामपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
2: जब से हमारी सरकार बनी है पूरे प्रदेश में एक समान विकास की गति को हमने बढ़ावा दिया और निश्चित रूप से हमारा ये ध्यान रहा है कि हम गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, उसके हाथ में सीधा पैसा दे। बागवान और गांव में रहने वाला किसान, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और मैं बार बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास पैसा पहुँचे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की बड़ी जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण के बाद प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 1,200 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपए तक का लाभ होने की उम्मीद है। प्रदेश के 148 सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्धारित ड्रेस कोड का उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन, पेशेवर पहचान, संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देना और विद्यालयों में अधिक व्यवस्थित व पेशेवर शिक्षण वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के साथ साथ शिक्षकों को पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। आशीष कोहली ने कहा कि ड्रेस कोड सभी शिक्षकों व प्रधानाचार्यों सहित आउटसोर्स आधार पर कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकता, दिव्यांगता और गर्भावस्था की स्थिति में संस्थान के प्रमुख की अनुमति से निर्धारित ड्रेस कोड में आवश्यक छूट या परिवर्तन किया जा सकता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने शिमला में कहा कि लंबे समय से भुगतान ना होने से कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आंशिक भुगतान से आगे बढ़ते हुए सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के शेष वैध देय भुगतान की स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे सौर ऊर्जा क्रांति के बारे में। भारत की ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 50 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं।
3: भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 12 साल पहले 2 गीगावाट, आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

0: योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं।
1: राज्य बिजली बोर्ड के सलाहकार अनुराग प्राशर के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत 8,568 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
2: जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, हिमाचल प्रदेश में इस योजना में बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और लगातार लोग जो है इस प्रकार के संयंत्र लगा रहे हैं। जो आज तक का जो हमारे पास संख्या है प्रदेश में, वो 8,568 ऐसे रूफटॉप प्लांट लग चुके हैं, जिससे कि बहुत खुशी की बात है। इसमें हमारा जो है वो 29,439 किलोवाट जो है वो बिजली यहीं से प्राप्त हो रही है।
1: इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमेशा प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए नियमों को सरल व पारदर्शी बनाना जरूरी है।
3: बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉरपोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान के आईची नगोया में आयोजित किए जा रहे 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल के पदक विजेताओं को 5,33,00,000 रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की महिला खिलाड़ी पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33,33,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह पुरुषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में दोनों महान विभूतियों को नमन किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन व उनके आदर्श आज भी सेवा, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करते हैं।
4: आज उन सभी शहीदों को याद करने की जरूरत है जिनके कारण से हमें ये आजादी मिली। कुल मिलाकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो शिक्षा थी आज के युग में भी वो कहीं ना कहीं मायने रखती है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के धतवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान आज देश में जन भागीदारी का एक व्यापक आंदोलन बन चुका है। राजधानी शिमला में पुराने बस अड्डे के समीप चलाए गए स्वच्छता अभियान के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और पिछले 12 वर्षों में देश में स्वच्छता को लेकर व्यापक जनचेतना पैदा हुई है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया है, स्वच्छता के अभियान को, जो एक आंदोलन का रूप बन करके आज पूरे समाज के बीच में, आज हम पूरे देश के अंदर देखते हैं कि हर जगह स्वच्छता को लेकर के जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता को लेकर के लोगों ने जिम्मेवारी की है। रहेगी तो बीमारियां कम होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विशेष आग्रह स्वच्छता के विषय में रहता है, हम सबको बढ़ चढ़ करके स्वच्छता के अभियान में भाग लेना चाहिए।
1: पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक मेजर विजय सिंह मनकोटिया का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में SDM अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।
6: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हिमदर्शन। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
7: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम साहित्य भारती रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञेय और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़ कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती, इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर

0: पटरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मान कर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
1: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
2: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
4: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे।

0: चलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
1: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है, इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
0: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखलाकर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
1: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
0: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता ना चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
1: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब, उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताज़ा ताज़ा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
0: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख ना भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी, ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से ना इन बातों को समझती थी और ना समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
1: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई कबूलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूँ इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूँ बुला लूँ, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूँ, हंसाऊँ रुलाऊँ या जी जलाकर खाक कर दूँ, फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूँ, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूँ नचाऊँ।
0: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आईं जिन्होंने मुझमें खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बजाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मार्खे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
1: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खतखत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेचदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को, कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था, जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की, और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया। मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
0: पतरस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: इस्मत फुहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मज़ा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज़्यादा अहम चीज़ इस्मत की तख्लीकी क़ुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
0: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
1: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
0: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
1: तेरी

0: अभी आपने सुनी इस्मत चगताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं, बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं, बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है, जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में, जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हम सफर में।
1: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरे पन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूँ तो सूरदास, उन्होंने वहाँ पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर कांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है। कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास नित प्रति पुण्य रहे आनन को जास, मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देख है। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है। ये केशव ने रामचंद्र का में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
2: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
5: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। अज्ञे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है अंजलि भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
3: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
2: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
3: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं हूँ प्रांजल।
0: चांद कविताओं का हमसफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरालुल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से दिल्ली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 रिलीज किया जाएगा।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप हिज हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं आक्रमण से भरपूर। टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला।

0: भारत ने आज। खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने पांचवें स्वर्ण पदक का जयघोष था। वो पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद। पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए। हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही चॉइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 20.

0: 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
1: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाऊ पेंचो का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
4: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0, and finally the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में दो लड़कियां थीं, कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
4: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
0: इन सेलिंग 16 ईयर ओल्ड माही वर्मा फिनिश्ड 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कंपटीशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
0: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
0: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every 4 Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jaymina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a 4th appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर

0: तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: आपने अभी सुना राग मारू बिहाग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग। कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम, श्री रफीक खान विल नाउ प्रेजेंट राग जोग। द कॉम्पोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल एंड द्रुत तीन ताल रिस्पेक्टिवली।

0: आपने अभी सुना राग जोग। इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी।
1: इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई।
0: इसके साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
2: You just heard Raag Jog. With that, we conclude the violin recital by Shri Rafiq Khan in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. This program was produced by Akashwani Ahmedabad. With this, we come to the end of the National Program of Music. This broadcast came to you from Delhi Station of Akashwani.

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
2: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टुडे सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट डेकेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स इंप्रूव्ड डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low. And foreign exchange reserves stand about $766 billion.
5: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event.